कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पसारिया चीज करण मन पावन दे हर पूजन नाही हारिया कर गुरु मैं सिखाया।

रंग बने बहराए को सचा सो जित मुख सदा सलाही है पागण ती चार नानक ते मुख उजले तित सचै दरबार।

आखे अपना जिसना ही सोचन गड़िये कीता आपो अपना पे ही लिखा संडिये जा रहना ना ही है तो जगता का।

0: पहला नान फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सदिए मुथुका फिके पाए फिका मूर्खा किए पाना ले सुजा
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ साठ तीर्थ जे नामे हैं उतरे नहीं मैल जिन पट अंदर

0: दरबाटी ऊपर खर्च मंगा जब दे खाहे
1: दीवाने को कल में कहा तुम दे दर ले लेखा पीड़ छुटे
0: नानका जो तेल बोड़े आप ही करना क्यों कल आपे ही तेल तारिये देखे किता अपना हर कच्ची पर पकी सारिये जो है सुचल सी सब कोई आई बारिये।

नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा च तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। पेश कर रहे हां सूफियाना कलाम। कंबली सड़ी फकीर दी हसिया ताड़ी मार, आखे एवी लै गया मोढ़िआं उत्तों पार। असीं वी इस दुनिया

वे सांवला न मार नैना दे तीर। हुणे तुसी अख्तर अली मतोई, हुणे तुसी अख्तर अली मतोई दी आवाज च गुलाम फरीद दा एक कलाम सुनिया। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हां दा ना जगते कोई ओ भी पुत्तर पलदे देखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नी गलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, बुलिया हथ खाली ओ मलदे देखे, हथ खाली ओ मलदे देखे। ते आओ हुण सुनदे आं सरबजीत दी आवाज विच शाह हुसैन दा कलाम। दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन ला लिया बेपरवाह दे नाल, उस

0: आवो ने सयोर अल देवो नी वदाई, मैं वर पाया रांझा माही। पूजा गिल दे गाए बाबा बुल्ले शाह दे इस कलाम दे नाली। हुन सूफियाना कलाम दा ए प्रोग्राम एथे खत्म हुंदा है।
1: हुन तुसी सुन रहे सी सूफियाना कलाम। इस दे नाली साडी आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस 3 दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा समाप्त हुंदी है। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स तेखा सवाइ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश से बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम जो आगाज थी चुको आहे। डिटेल्स कुछ हिन तरह आहिन। थोड़ी देर में तमाम भगत कवाराम जे मिठड़े मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा, तंहिंखां पोइ तव्हां तबसरो ॿुधंदा, पोइ फिल्मी गीत ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। हीअ त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर अचो त भगत कवाराम साहिब जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

आए हिक आर्मी हब ठाए थो। आर्मी एक्सपर्ट जे अगवानी में मिशन जुदा जुदा मंत्रालय इंडस्ट्रीज ए अकादमियों जे सहकार सां सेमीकंडक्टर ए डिस्प्ले इकोसिस्टम जे विकास लाए हिक हब तौर कम करे थो। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM जो मकसद सुरक्षित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जे अपनाइण ए हिक काबिल भरोसे वारी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो विकास करण आहे। इन कच्चे माल में खास केमिकल गैस ए पैदावार जो सामान शामिल आहे जेको इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन EDA टूल्स फाउंड्री सर्विसेज जो शुरुआती चरण के शुरू करण लाइ बेन मुनासिब तरीकन में जरूरी मदद हासिल कराईंदो। भारतीय सेमी कंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री जी तमाम घणी वाद के योग्य बनाए थो। इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वाधारो ए सहूलियत हासिल कराइण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज जी ताकत वधाइण योग्य ए प्रोत्साहन डेण भारतीय सेमीकंडक्टर ए डिस्प्ले इंडस्ट्री जे वडे पैमाने में प्रोडक्शन के इस्तेमाल करण लाए तरीका कायम करण आलमी सहकार ए अकादमी रिसर्च संस्थाओं व्यापार में बेन तरीकन जरिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COCS कायम करण जरिए वाधारो कंदड़ ए इनकलाबी टेक्नोलॉजी सा सेमीकंडक्टर्स ए डिस्प्ले इंडस्ट्री में नई रिसर्च के योग्य ठाण राष्ट्रीय ए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों व्यापार ए संस्थाओं सा सहकार ए भाईवारी प्रोग्रामन के योग्य ठाण तजी कैटेलाइजिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च कमर्शियलाइजेशन ए कौशल विकास के तकड़ो करे सके थो। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम तहत मंजूर थियल योजनाओं लाए नोडल एजेंसी तौर कम कर रहे आयो। ISM पारा वसूल कयल आवेदन कंदड़ के जांचो पयो वञे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM भारत में सड़ककारी के आकर्षित करण लाए जुदा जुदा स्टेक होल्डर्स ए डिस्प्ले इकोसिस्टम सां पिण लगातार लगापो ठाहे रहियो आहे। भारत एक टिकाऊ सेमीकंडक्टर ए डिस्प्ले इकोसिस्टम ठाहिण लाए 76,000 करोड़ रुपयनि जे माली खर्च सां व्यापक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जी मंजूरी डि॒नी आहे। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स फैब्स डिस्प्ले फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर्स ए सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग ए डिजाइन जहिड़नि खेत्रनि में कंपनियुनि खे आइडिया पेश करे थो जेका सेमीकंडक्टर्स जी पैदावार ए सहकार खे वधाए थो। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो मकसद सेमीकंडक्टर ए डिस्प्ले डिजाइन ए नए हिक व्यवस्थित व्यापक इकोसिस्टम ठाहिण आहे जेको आलमी इलेक्ट्रॉनिक्स जी पैदावार ए डिजाइन जे खेत्र में इंडिया जो पोजीशन खे मजबूत कंदो। मिशन योग्य तौर ते इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जी पैदावार खे वाधारो डिए थो ए सहकार वारी रिसर्च कमर्शियलाइजेशन ए एक्सपोर्ट जे वाधारे लाए भाईवारी खे हिमथाए थो। इहो ख्याल आहे भारत जल्द ही चिप ठाहिण जी हब तौर उभरण जी उमीद रखे थो ए हिन कम में अॻियां वधी चुको आहे। सड़ककार भारत जे सेमीकंडक्टर खेत्र में गॾु थी रहिया आहिनि। आलमी एडवांस माइक्रो डिवाइसिस बेंगलुरु में पंहिंजे सभ खां वधीक 400 मिलियन अमरीकी डॉलर जे सड़ककारी करण जो इरादो रखे थो। लगभग 3,000 इंजीनियर खे रोज़गार ॾींदो। माइक्रोन जो भारत में पैक करण जो यूनिट कायम करण जो फ़ैसिलो वधीक रांदीकरण खे आकर्षित करे रहियो आहे। सिमटेक ऐं एयर लिक्विड जहिड़ियूं कंपनियूं ऑपरेशन शुरू करण में दिलचस्पी ॾेखारे रहियूं आहिनि। वेफर टूल ठाहींदड़ ॿुधायो वञे थो मुल्क हिकु बुनियाद क़ाइमु करण ते वीचार करे रहियो आहे। तरक़ी कंदड़ भारत जे सेमीकंडक्टर हब जे वीचार लाइ हिकु पॉज़िटिव रस्ते जी निशानी आहे। भारत जो टाटा ग्रुप ताइवान जे पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC सां गॾु 91,000 करोड़ जे सड़ककारी ते गुजरात में हिकु सेमीकंडक्टर चिप ठाहिण सहूलियत पिण क़ाइमु करे रहियो आहे जंहिं में हर महीने 50,000 वेफर स्टार्ट्स पैदावार थी सघे थी। टाटा सेमीकंडक्टर्स असेंबली ऐं टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT चयो त उहो आसाम जे मोरेगांव में 27,000 करोड़ रुपयनि जे सड़ककारी सां हिकु सेमीकंडक्टर यूनिट क़ाइमु कंदो। सानंद में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जो उद्घाटन 28 फरवरी 2026 ते कयो वियो।

हीअ ॿ ढाई पंजहतरि बिलियन डॉलर ते सहूलियत एआई ऐं ॿियनि खेत्रनि लाइ ड्रैम ऐं नैंड शयुनि खे ठाहींदो, टेस्ट मार्किंग ऐं पैक करण ते ध्यानु ॾींदो। सानंद में कनेस टेक्नोलॉजी प्लांट जो उद्घाटन 31 मार्च 2026 ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पारां कयो वियो। यूनिट जेको हाणे कम करे रहियो आहे, घरेलू चिप पैदावार में हिकु अहम कदम जी अॻवानी करे थो। ही विकास आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत जे पोज़ीशन खे मज़बूत करण में हिकु अहम कदम जी अॻवानी करे थो। प्लांट जो उद्घाटन कंदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चयो त दिल्ली में आयोजित कयल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट दुनिया खे उन जे एआई सलाहियत जी जाण कराए थो। थोरे अरसे में भारत जे सेमीकंडक्टर स्कीम केतरनि ई वॾनि मल्टीनेशनल कंपनियुनि खे आकर्षित कयो आहे। एक्सपर्ट जे अनुसार इहो मुल्क में हिकु सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क़ाइमु कंदो, जेको घणे वक़्त में चीन ऐं ताइवान जे ताक़त खे ख़तम करे सघे थो। एक्सपर्ट जो ख़्यालु आहे त इहो यूनिट लॻभॻि 6000 अणसिधी तरह नौकरियुनि खां सवाइ नई टेक्नोलॉजी जे खेत्रनि में हज़ारे सिधी तरह रोज़गार जा मौक़ा पैदा कंदो। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

तव्हां भगवती नवानी खे ॿुधी रहिया हुआ। फिल्म हुई सिंधी जे किनारे। हींअर पेश आहे फिल्म लाडली जो गीतु।

0: जल चमकाए थल चमकाए सारो जग चमकाए रोशन सब जीरा बनाए
1: रोशन सब जीरा।

0: जचन रजा अलमस्त इशारा जा अलमस्त इशारा निर्मल निर्मल नूर नजारा
1: नूर नजारा नूर नजारा गिर मिल लाई दो दिन वारा
0: चल में मोती उभ में तारा भूए अंदर भंडारा संद दया जा मेहर मया जा
1: संद दया जा मेहर मया जा।

0: मंझंदवारो आयो लाल
1: लाल सुले लाल
0: अटेवारो आयो लाल
1: सुले लाल सुले लाल
0: सोतनवारो आयो लाल
1: सुले लाल सुले लाल
0: लरनवारो आयो लाल
1: सुले लाल सुले लाल
0: घोड़ेवारो आयो लाल
1: सुले लाल सुले

तमारा पानवाणी खे बुधी रहा हुआ फिल्म हुई झूलेलाल। हियर पेश आहे फिल्म शल धीअर न जमन जो गीत।

यह आकाशवाणी की संदेश सर्विस है। हियर पेश है फिल्मी हियर पेश है खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम सा गालियों कंदो परडेही मामलन जो वजीर डॉक्टर एस जयशंकर तेज रफ्तार ते मर्जंदर आलमी निजाम ते भारत जे बेहक के पधरो कयो ऐं चयो ता आलम तब्दीली जोग्राफियाई सियासी माली बेबकाई मर्जंदर ताकत जे बेहक ते आधार रखे थो। भारत जो नेवल शिप सुनेना यगुन बंदरगाह म्यांमार ते पहुंतो आहे। यह कार्रवाई इलाय कम भारत जे हलंदर सामुंडी मशगूली जो हिस्सो आहे। अमरीकी सूबाई सेक्रेटरी मार्को रूबियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका जे हलंदर फौजी कार्रवाई के पंहिंजे बरकरार नेवल ब्लॉकेट जी बचाव कार्रवाई करे रहे कोठियो आहे। आईसीसीआई मर्दन जे टी20 क्रिकेट रैंकिंग में भारत अहम बेहक बरकरार रखी थी।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजो प्रोग्राम वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे।

0: श्री तोलाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कसगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues.

संगीतिका कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्तुति तिवारी के गाए कुछ भजन। आइए अब सुनते हैं मीराबाई की रचना, बोल है मनवा राम नाम रस पीजे।

अभी आप ये एक पारंपरिक रचना सुन रहे थे, स्वर स्तुति तिवारी का था। इसके साथ ही संगीतिका का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। अब वक्त हो चला है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग के आज के इस एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त नवीन सक्सेना, कुछ सदाबहार गीतों को आपके साथ जोड़ने के लिए, और आप इसे अपनी आवाज में, अपने अंदाज में थोड़ा सा

सुना भी सकते हैं सुबह सवेरे। तो आज हम लेकर आए हैं वो नगमे जो वक्त की धूल में खोए नहीं बल्कि और चमक उठे, कुछ सुरीले स्वर, कुछ सुरीले अंदाज में, और उन्हीं में एक आवाज है मोहम्मद रफी की। शुरुआत इस बेहतरीन गीत के साथ शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे।

रफी साहब की आवाज का वो जादू सीधे दिल पर दस्तक देता है। लेकिन दोस्तों, जब तारीफ जुबान पर होती है तो अंदाज थोड़ा सा नट

0: ठोक ही जाता है। आशा जी की चुलबुली आवाज कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उनके कुछ संजीदा गीत भी हैं, जो बताते हैं वो कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दिया करती थी। अगला गीत जो इस समय हम आपको सुनवाएंगे वो है फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। आशा भोसले की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और खयाम का संगीत है।
1: अच्छा, तुम इतना हसीन।

वक्त पहले भी वही था, वक्त अब भी वही है। वक्त पहले भी वही था, वक्त अब भी वही है। वक्त पहले निकल आता था, अब वक्त निकाला नहीं करते। गुरेज इस बात का नहीं है, गुरेज इस बात का नहीं है कि मिलते नहीं हो। तू किस बात का है, क्या अब जानते भी नहीं हो।

सुंदरता की बात चली है तो फिर हम चांद को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह चांद की बात करें यह भी बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन दोस्तों चांद कभी छुपता नहीं है, सूरज की रोशनी के सामने थोड़ा सा दब सा जाता है। लेकिन सूरज की रोशनी भी कब तक रहेगी? देखिए ना, जब सूरज थमेगा, सूरज छुपेगा, तो चांद अपने आप ही सामने निकल आएगा और फिर उसकी खूबसूरती असीम है। देखिए ना क्या खूब कहा है।

चांद जैसे। कभी कभी सोचा है कि आपने सिर्फ चलते जाएं और मंजिल कहीं ना आए बस, और वो तब होता है जब बहुत ही खूबसूरत रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है। आपको मालूम है कि आपकी मंजिल वहां है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मंजिल कभी ना आए, ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। एक ऐसा सफर जो बेइंतहा हो, एक ऐसा सफर जिसमें मंजिल तो हो लेकिन जैसे ही आप चलते जाएं वो दूर चलती जाए, वो दूर होती जाए, लेकिन फिर भी वो सफर कितना खूबसूरत हो कि आप कभी अपने मुकाम तक पहुंच ही ना पाए। कभी महसूस कीजिएगा इस चीज को, अब फिर देखिएगा कि कितना उड़ान भरता है आपका दिल। फिल्म नदिया के पार, हेमलता की आवाज और उनके साथ में जसपाल सिंह, रविंद्र का संगीत, रविंद्र का गीत।

अक्सर लोग पूछते हैं कि पुरानी चीजों में ऐसा क्या खास है जो आप इनको इतना प्यार करते हैं। कोई इनको क्या बताए जो बात तो पुरानी चीजों में है वो नई चीजों में कहां? जो प्रेम है, जो खलिश है, जो खूबसूरती है। अब देखिए ना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है फिल्म ताजमहल का, रोशन का संगीत है, मोहम्मद रफी की आवाज है और बोल है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, एंजॉय कीजिए।

और चलते चलते आज की महफिल का, आज के इस खूबसूरत सफर का एक आखिरी गीत भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, बस सुरों का साथ काफी है। एंजॉय कीजिए इस गीत के साथ और इजाजत दीजिए अपने दोस्त नवीन को आज के इस कार्यक्रम को यहीं यहीं यहीं समाप्त करने की।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रची।

0: ने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉ. मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
3: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
4: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक

0: प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रूपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लोंग से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, 2 others in ISIS linked bioterror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period of time. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 8 wickets. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से।

0: मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरख्वास्त की थी कि उनके जहाजों को लड़ाई में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 156 रन के लिए खेलते हुए नई चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर्स और तीन गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि इन खित्तों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया है कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम में भी शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इतवार तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से पहर तक इक्का दुक्का मकामात पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कौनेन। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिन्दुस्तान एक्सप्रेस के अलावा दीगर अखबारात में भी वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की सख्त मजम्मत किए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। भारत और जापान का सेहत के शोबे में तआवुन को मजबूत करने पर जोर, इस खबर को हिन्दुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाया किया है। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस बयान को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल और आसाम समेत पूरे मुल्क को तरक्की देंगे। बीजेपी ने अमित शाह को मगरबी बंगाल और जेपी नड्डा को आसाम का मुबसर मुकर्रर किया है। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाया किया है।
0: आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज़ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाई हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग विभास में ख्याल। कलाकार हैं शिव प्रसाद राव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी शिवप्रसाद राव का गाया राग विभास में ख्याल। इसके साथ ही स्वर्गम का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

अभी आप साइंस मैगजीन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी गायक।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। नजर डालते हैं आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबगाही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में शब्द नशर किया जाएगा। 9:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज सवेरे और खबरें 9:50 पर नशर होंगी। 10 बजे शम्मे फरोजा प्रोग्राम पेश किया जाएगा। उसने गजल प्रोग्राम होगा 10:05 पर। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ड्रामा आखिरी ख्वाहिश। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर सुनिएगा ड्रामा आखिरी ख्वाहिश का दूसरा और आखिरी हिस्सा। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौराने प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है संत कबीर। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में आप सुनिए शब्द।

0: सुबह का ही प्रोग्राम में अभी आप शब्द सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। आज यानी 23 अप्रैल के दिन 1739 में चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने वसई अभियान पर विजय प्राप्त की और उत्तरी कोंकण को मराठा साम्राज्य में लाया गया। और 1997 में आज ही के दिन फ्रांस की क्रिस्टीन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी। इसके अलावा कुछ ऐसी शख्सियतें थी जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई, तो उन्हें भी अब हम याद करेंगे।
2: दिस इज व्हाट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले कहां से शुरू कर रहे हैं?
2: फर्स्ट वी विल टेल आवर लिसनर्स अबाउट सिगमंड फ्रॉयड, द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, अ थ्योरी ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स एंड अ मेथड ऑफ हेल्पिंग पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। टुडे इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी, सो ही इज साइकोलॉजीज मोस्ट फेमस फिगर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वन एज वेल। एंड सिगमंड फ्रॉयड was an Austrian neurologist born in 1856, and we often refer him as father of modern psychology. So Freud revolutionized how we think about and treat mental health conditions. Freud founded psychoanalysis as a way of listening to patients and better understanding of how their minds work. So psychoanalysis continues to have enormous influence on modern psychology and psychiatry as well. So his theories and work helped shape current views of dream, childhood, personality and therapy as well.
1: आज निशानेबाज गगन नारंग का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1983 में चेन्नई में जन्मे, भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गगन ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 4 बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले और साथ ही कई वर्ल्ड कप खिताबों को अपने नाम करने वाले इस खिलाड़ी ने भारत को बहुत से मौकों पर गौरवान्वित किया। भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। और आज भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्मदिन है। 1985 के दक्षिण फेडरेशन सैफ खेलों में काठमांडू में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और नया राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया था। सिंह को 1984 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। आज लांस नायक आबिद खान की जयंती है, जो भारतीय सेना के उन जाबाज सैनिकों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में पाली नगर के मोहल्ला काजी सराय में 6 मई 1972 को जन्मे लांस नायक आबिद खान ने करगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया। उनके बलिदान पर आज भी पूरा देश गर्व करता है। 30 जून 1999 को आबिद खान जत्था रवाना हुआ। दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई सैनिक शहीद हो गए। एक गोली आबिद के पैर में भी आ लगी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़कर एक साथ 32 फायर झोंक दिए। आबिद के इस ताबड़तोड़ हमले में 17 पाक सैनिकों की लाशें भिज गई। इस बीच एक और गोली आबिद को आ लगी, जिससे ये वीर सपूत देश की रक्षा करता हुआ 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गया।

0: अनुवादक और आलोचक अब्दुल रहमान राही की जयंती है। उन्हें उनकी कविता संग्रह नवाज़े सबा के लिए साल 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2004 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और आज गोविंद मुनीस, भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की पुण्यतिथि है। हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन उस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने और वो फिल्म आज कल्ट फिल्म बन गई है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी फिल्म का एक डायलॉग।
1: कहाँ है, वहीं चल के बैठो ना।
2: नहीं, पहले एक बात बताओ।
1: कहाँ?
2: तुम नाराज हो मुझे?
1: नहीं तो नाराज काहे होंगी?
2: तो फिर बात का है, आज इतनी बदली बदली का नजर आ रही हो? कितनी देर हुई हमें आके? पास आके बोलना बतियाना तो छोड़ो, देखा भी नहीं हमारी तरफ। इसलिए हमको लगा कि कल की बात से
1: ऐसा काहे सोचते हो?
2: तो
1: का सबके सामने तुम्हारे पास आके बैठ जाती, लाज नहीं आती हमको का?
2: पहले तो नहीं आती थी, कभी सबके सामने बात नहीं करती थी या कभी पास नहीं आती थी।
1: तब की बात और थी, अब ये सब नहीं होगा हमसे।
0: गोविंद मुनीस ने एक और अभिनेत्री को ब्रेक दिया था, जिनका नाम आज हिंदी सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं में शुमार किया जाता है, और वो हैं माधुरी दीक्षित, जिन्हें पहली बार गोविंद मुनीस ने फिल्म अबोध के लिए चुना था।
3: सो वी लिसन टू द डायलॉग फ्रॉम द मूवी, व्हाई डोंट वी गो अहेड एंड लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी एज़ वेल।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असम्बलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बाहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने किया था। उनके हमरा वियतनाम हुकूमत के बहुत से वजीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ भी है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफ भी भारत आया है। सदर तो लाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर मुंतखब किए जाने के बाद भारत का यह पहला सरकारी दौरा है। भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस को इंतखाबात के बाद किसी भी किस्म के तशद्दुद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न किए जाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। जमीनी सतह पर सूरतहाल का जायजा लिए

करने के बाद जारी किए गए एक हुक्मनामे में कमीशन ने सख्त और फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया ताकि असेंबली इंतखाबात के नतीजे के बाद अमन व कानून को बरकरार रखा जाए। इंतखाबी कमीशन ने रियासती इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो इंतखाबी नतीजे के ताल्लुक से डराने धमकाने बदले या टकराव की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यह हिदायत तशद्दुद के उन अलग अलग वाकयात के बारे में तशवीश के दौरान जारी की गई है जिनकी इतला नतीजे के ऐलान के बाद दी गई थी और जो इंतखाबात के बाद रियासत के इलाकों में बार बार उभरने वाला मामला है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नई असम्बलियां तश्कील दिए जाने की गरज से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये नोटिफिकेशन बाजाबता तौर पर इंतखाबी अमल के अख्तिताम पजीर होने और नई सरकारों की तश्कील के मकसद से रियासतों के गवर्नर्स और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को भेजे गए हैं। इंतखाबी कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि नोटिफिकेशन का इजरा चुनाव नतीज के ऐलान के बाद एक क्लीदी आईनी कदम है और इसके साथ ही इंतखाबी कमीशन की जानिब से नई असम्बलियां तश्कील दिए जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अहदेदार ने यह भी कहा कि कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के दौरान सभी जाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक पूरा अमल कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी को हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वजीर अजम मोदी को हालिया तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी ने 294 रुकनी बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीती हैं जबकि ममता बनर्जी की क्यादत वाली तृणमूल कांग्रेस ने महज 80 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर आसाम में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा अपना इख्तदार बरकरार रखा है जबकि पुदुचेरी में एनडीए ने 30 से 18 सीटें जीतकर वाजा अक्सरियत हासिल कर ली है। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में एक वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली टीवीके रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। पार्टी का कहना है कि उसके लीडर जोसेफ विजय आज गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी का दावा पेश करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। कौमी तहकीकती एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को एक बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआई की एक साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। हैदराबाद में मुकीम डॉक्टर सैयद अहमद मुहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के साथी मुलजिम आजाद और मोहम्मद सोहेल को गुजरात के शहर अहमदाबाद में एनआईए की खसूसी अदालत के सामने ये फर्द जुर्म पेश की गई है। मुलजमीन ने दौलत इस्लामिया से वाबस्ता बैरून मुल्क मुकीम अपने आकाओं की हिदायत में काम करते हुए अपने आकाओं की तरफ से कमजोर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर भर्ती करने के लिए उनसे मिलजुल कर काम किया था ताकि जिहाद में मदद दी जा सके और ममनू हथियारों निज बायो टेररिज्म के जरिए दहशत फैलाई जा सके। उन्होंने एक इंतहाई जहरीले मादे राइसिन या अरंड के इस्तेमाल की मंसूबाबंदी की थी जिसे कीमियावी हथियारों के कन्वेंशन की पहली फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन लोगों का मकसद आईएसआईएस के इन नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ाना था। पंजाब में कल शाम जालंधर में सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर के सख्त हिफाजती इंतजाम वाले मरकजी दरवाजे के करीब एक धमाका होने से इलाके में खौफ इरास और तश्वीश पैदा हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक ऑनलाइन सामान डिलीवरी कंपनी में काम करने वाला डिलीवरी बॉय बीएसएफ एहलकारों को पार्सल पहुंचाने आया था। जब वो पार्सल पहुंचाकर अपने स्कूटर पर वापस आया तो एक धमाका हुआ जिससे उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और करीब के कुछ खंभों को भी नुकसान पहुंचा। उस लड़के के भी मामूली चोटें आई हैं। वाकये के फौरन बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और तमाम जावियों से मुआयना किया जा रहा है। जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर जो इस तफ्तीश की निगरानी कर रही हैं उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि तहकीकात जारी है और डिलीवरी बॉय भी पुलिस के साथ तआवुन कर रहा है।
अमरीकी सदर

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आब नए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों की रहनुमाई करने वाला एक मिशन है, कुछ वक्फे के लिए रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजराई को खत्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ्त की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए आबनाए हुरमुज में जहाजों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। जनाब ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौरखोज करने का वक्त मिल जाएगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रोबियो की तरफ से ये कहे जाने के बाद किया है कि ईरान में अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद खत्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरखास्त की थी कि उनके जहाजों को लड़ाई में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा की तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा कि इन खितों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने यह भी बताया कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और सिक्किम में भी शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इतवार तक मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से इतवार तक 21 मकाम पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। उसने यह भी कहा कि कोंकण और गोवा में इतवार तक गर्मी और हवा में नमी रहने का भी इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अकवाले जर्री का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: हलाल और जायज जराए आमदनी से कमाया गया माल रिस्क हलाल कहलाता है। हलाल कमाई एक जामे लफ्ज है जिसका मतलब है कि कमाने और रोजी हासिल करने के उन तमाम तरीकों से बचना जिनमें दूसरों के लिए किसी भी किस्म का धोखा या नुकसान व तकलीफ हो, खा बिलवास्ता हो या बिलावास्ता। किसी भी कामयाब इकॉनमी और मईशत की बुनियाद एतमाद और सिद्क बयानी पर होती है। और जो मईशत एतमाद और सच्चाई से खाली हो जाए, जहां झूठ, धोखा और फरेब आम हो जाए, ऐसी मईशत कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब मईशत सबके लिए यकसा मवाके के उसूल पर मबनी है, और कमाने के यकसा मवाके उसी वक्त मुमकिन है जब रिस्क हलाल तरीके से कमाया जाए और नाजायज और हराम तरीकों से माल को चंद हाथों में मरकूज न होने दिया जाए। कुरान और हदीस में रिस्क हलाल की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने तुम्हें जो पाकीजा और हलाल रिस्क दिया है उसमें से खाओ पियो। सूरह मोमिनून आयत 51। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स दुनिया को जायज तरीके से हासिल करता है ताकि मांगने से बचे, अहलो अयाल की किफालत करे और हमसाये की मदद करे, तो कयामत के दिन जब वो उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा। आपने एक और हदीस में फरमाया, किसी ने भी आज तक अपने हाथ की कमाई हुई गिजा से ज्यादा बेहतर गिजा नहीं खाई, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ की कमाई से खाते थे। हलाल रिस्क خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔

0: हुजूर आलम पना, पता चला है कि मेरठ की फौज बागी होकर इधर ही आ रही है। वहां उन्होंने अंग्रेजों का कत्लेआम किया। अब यहां के अंग्रेज हाकिम को मौत के घाट उतार कर उसके बंगले में आग लगा दी है, जिससे ये शोले बुलंद हो रहे हैं।
1: या खुदा, हुजूर आप चारों तरफ के दरवाजे बंद करा दीजिए ताकि इन बागियों की पहुंच यहां तक ना हो। आप फौरन चीफ कमिश्नर साइमन फ्रेजर साहब को इसकी इत्तला कर दीजिए, खत लिख दीजिए हुजूर, ना मालूम सुबह तक क्या हो।
2: लीजिए, इसे भिजवा दीजिए।
1: अब आप आराम फरमाएं।

0: Huzur.
1: Bu ne ki? Şu bana Salim kartı hote ve bu sefer lal kalede kagay. Ye deki ye idar bir jharoke kis niche aa rahi hai huzur.
2: बादशाह सलामत को हम सबका सलाम कबूल हो जिल्ले इलाही हम आपकी रियाया हैं हम इंसाफ के उम्मीदवार होकर आपके दर तक आए हैं हम पर जुल्म हो रहा है हमने जी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों की मदद की हमारी कुव्वत से उनका तसल्लुत कायम हुआ और आज हमारे एहसानों का बदला यह है कि हमारे दीन और ईमान को लूटा जा रहा है
3: हमसे रोजी रोजी छीनी जा रही है हमको काला आदमी कहकर नफरत से देखा जा रहा है हमारी जिंदगी फौज में कुत्ते से भी

0: देखिए हुजूर, आज 6-7 रोज से शहर में अजीब हंगामा हो रहा है। तिरंगे और फौजियों ने सारे शहर में लूट मार मचा रखी है। आपने इनको पनाह दी और इसका ये बदला दे रहे हैं।
1: नरसिंह भौल, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम हाथी पर सवार होकर कोतवाली चबूतरे पर पहुंचकर ढिंडोरा पिटवा दो।
2: खल खुदा की, मुल्क बादशाह का हुक्म फौज के बड़े करार

0: भी नफरत है।
1: हुजूर, ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ईद अजहा के मौके को अपनी जलील हरकतों का निशाना बनाना चाह रहे हैं, हिंदुओं को उकसाने के लिए गाय काटी जाएंगी।
2: सिपे सालार बहादुर, शहर कोतवाल सैयद मुबारक शाह को हिदायत दी जाए कि वो तमाम शहर में ऐलान करा दें कि जो भी कोई ईद उल अजहा के मौके पर गाय की कुर्बानी देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। मेरे लिए धर्म और दीन की दीवार कोई माने नहीं रखती, खाह मस्जिद में खाह मंदिर में, मुद्दा सजदा है कहीं हो जाए। ईद का मुबारक मौका तो खुशी का मौका है, खूनरेजी का नहीं। कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि जैसे मुसलमान मेरी एक आंख है, वैसे ही हिंदू मेरी दूसरी आंख है। हमारे जीते जी कोई ताकत इनको जुदा नहीं कर सकती, दोनों की मिली हुई ताकत दुश्मन पर कयामत बर्पा कर सकती है। ये एका नहीं टूटने पाए मौलवी साहब।
1: बहुत अच्छा जिल्ले इलाही, खुदा हाफिज।
2: कौन? बस खां बहादुर?
3: आलम पना, आदाब बजा लाता हूँ।
2: कहो सिपे सालार, फौज का इंतजाम कैसा है?
3: हुजूर, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, सब मोर्चे कसे हुए हैं, हमारी तोपें मुनासिब जगहों पर लगा दी गई हैं, फौजें तैनात हैं। लेकिन जिले सुभानी, कोई मुल्क खाली फौजी ताकत पर फतेह हासिल नहीं कर सकता।
2: तुम कहना क्या चाहते हो बख्त खान?
3: हुजूर, हमें मुखबिरों से होशियार रहना पड़ेगा, दरबार और महल की खबरें दुश्मन तक पहुंच रही हैं, किले मोहल्ला में साजिश का जाल बिछा हुआ है, महबूब अली खां और हकीम एहसानुल्लाह खां पर से लोगों का एतबार उठ रहा है, ये दोनों अंग्रेजों से मिलकर गहरी साजिश कर रहे हैं, ऐसा उनका ख्याल है।
2: इस तरह की बात हम पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं बख्त खान, किसी पर बेवजह तोहमत लगाना गुनाह होगा। बख्त खान, हकीम साहब के कितने एहसानात हमारे ऊपर हैं, उनकी वजह से हमारी सेहत कायम है, किसी के एहसानों का बदला इस तरह देना हमारे जमीर में नहीं। कभी कोई सबूत मिले तो पेश करना, सल्तनत मुगलिया किसी के साथ बेइंसाफी नहीं बरतेगी। एक मुखबिर लायक सजा होता है, ये हम बखूबी जानते हैं।
3: शहजादा मिर्जा मुगल को हमारे खिलाफ भड़काने में उन्हीं का हाथ था जिले सुबानी, फौज की तनख्वाह हकीम साहब देते हैं, जिसकी बद इंतजामी की वजह से सिपाही आपस में लड़ बैठते हैं, और मैं तो उनकी आंखों में कांटे की तरह गड़ा हूं। उनका बस चलता तो मैं कब का अपनी नजरों से गिर गया होता।
2: तुम्हारा इस तरह सोचना वाजिब नहीं लगता बख्त खान, हमने तुमको इंसाफ पसंद बहादुर नेक नियत इंसान समझकर फौज हिंदुस्तान का सिपे सालार मुकर्रर किया, तुम हमारे लिए शहजादों से भी बढ़कर एतबार के काबिल हो, ये सब जानते हैं।
3: गुस्ताखी मुआफ हो, मैंने आज आपके सामने वो सब कुछ खुलासा बयान कर दिया है जो सवाल जिहादियों तिलंगों और इनकलाबियों के दिलों में उठ रहे हैं। लोग यहां तक कहते हैं हुजूर कि मिर्जा इलाही बख्श और हकीम साहब अंग्रेजों के मुखबिर हैं।
2: अंग्रेजों के मुखबिर? आखिर कोई सबूत?
3: आप सबूत चाहते हैं ना, तो देखिए, जिहादियों ने इन दोनों का खत रंगे हाथों पकड़ा है।
2: हमारा हुक्म है कि इसकी तहकीकात फौरन से पेशतर की जाए और दोनों को हमारे सामने हाजिर किया जाए।
4: हुजूर ने याद फरमाया,
5: बंदा सलाम बजा लाता है।
2: आप दोनों पर अंग्रेजों की मुखबिरी करने का इल्जाम है,
5: ये हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं हुजूर?
2: तब ये खत किसका है?
5: ये खत और हमारे ही नाम, भला हम क्यों दुश्मन को लिखने लगे?
4: ओहो, लगता है ये खत जाली, यहां तक कि जाली मोहर भी लगा थी। आप खुद ही सोचिए, हमने आपका नमक खाया है हुजूर, उसकी अदायगी इस तरह करेंगे? किसी ने कहा और आपको यकीन आ गया?
2: यकीन आ गया होता तो तुम लोग सजा पा चुके होते।
6: आलमपना, आज मुझे खुद बीच में बोलना पड़ रहा है, महबूब अली खान और हकीम साहब ऐसे खतूत क्यों लिखेंगे? अपने ही लोगों को दुश्मन समझ लेना कहाँ तक वाजिब है आलमपना? कहीं जल्दी में उठाया हुआ कोई कदम गलत ना हो।
2: अगर ये लोग कहते हैं कि ये खत जाली है तो इसे फाड़ दो। ये तो तुम सभी जानते हो कि वक्त कितना नाजुक है। अगर हमारे पैर मजबूती से जमे रहे तो एक दिन वो आएगा जब फिरंगी इस मुल्क को अपने शिकंजे में न कस सकेंगे।
5: आप बजा फरमाते हैं, यही हम सबकी भी कोशिश है जहां पना। शादियाने की आवाज।
0: आलमपना, खुदावन ताला के फर्ज से आगरा फतह हो गया है। आलमपना, हुजूर अनवर साहब ने 21 तोपे सर कराई है और देखिए यहाँ भी शादियाने बज रहे हैं। बहुत दिनों से कलाए मोहल्ला में वो रौनक नहीं थी। आलमपना,
2: शहजादे मिर्जा मुगल, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है? खुदावन ताला तेरा लाख लाख शुक्र है।
5: मैं तो ये सोच रहा था इस खुशी में क्यों ना शाही जश्न मनाया जाए।
2: अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं।

अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा उमा भटनागर का तहरीर करदा ड्रामा, उन्वान था आखिरी ख्वाहिश। इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 11:30 पर नशर किया जाएगा। ड्रामे की पेशकश अनवर खान की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेशे खदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

कुमार सानू की आवाज में ये नगमा भी आपने सुना, फिल्म थी इम्तहान। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है। उदित नारायण की आवाज में फिल्म है वीर जारा।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से एयर हो रहा है प्रोग्राम मेरी पसंद। आखिरी पेशकश आप सबकी नजर है सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है लकी।

0: पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। सुनिए ड्रामा आखिरी ख्वाहिश, दूसरा और आखिरी हिस्सा आपकी नजर है।
1: हुजूर गजब हो गया,
2: कितनी ही मुश्किलें होती हैं, हम डट कर मुकाबला करते पर हुजूर 26 मई को इस्लामगढ़ के बुर्ज पर जो तोप लगी थी उसमें बारूद की जगह कंकर भरे थे। कोई उन जिहादियों का खून बहते देखता तो पत्थर भी पिघल जाता। इनकलाबियों का शक एहसानुल्लाह खां पर है, वो इधर ही बढ़ रहे हैं।
1: आज इस मुखबिर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसकी बोटी बोटी काट कर दम लेंगे।
3: अकीम के पास सबकी दवा है पर शक की दवा नहीं है। हम दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला की कदम कांपते हैं जो सब कुछ देखने वाला है।
1: ये झूठ बोलता है, पकड़ कर मार डालो।
4: आप लोगों पर ये कैसा जुनून सवार है, शक और शुबह पर किसी की जान लेना कहाँ तक वाजिब? क्या तुम में से एक भी चश्मदीद गवाह है? हैं? नहीं है तो फिर ये ख्याल दिल से निकाल दो। हकीम सब कुछ कर सकता है पर हमारे साथ दगा नहीं कर सकता। इसने कई बार हमारी जान बचाई है, किसी और की खातिर न सही, हमारी खातिर इस बेगुनाह को माफ कर दो।
1: आप कहते हैं तो हम में से कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, हम लोग जाते हैं।
3: बंदा तो आपकी चूतिया सहलाता रहेगा, आपके एहसान का बदला मर कर भी अदा न कर पाऊंगा।
4: लगता है इन जिहादियों को कोई वरगला रहा है।
3: ये वक्त ही ऐसा है हुजूर कि अपने पराए की पहचान मुश्किल है। छोड़िए इन जरा जरा सी बातों से आप परेशान ना हूं। आज तो मैं खुद ही जरूरी काम से आपके पास आने वाला था। आपने जो अपना अशार दिए थे उन्हें हमने काफी हद तक तरतीबवार लगा दिया है। लोग तो आपके चार दीवान देखकर हैरान रह गए थे, कुछ अशार और हों तो पांचवा दीवान तैयार हो जाए।
4: बस अब तो हकीम साहब यही जी चाहता है, हो सुलह कुल ए दिल कि सब उठ जाए लड़ाई, काफिर न मुखालिफ हो न दीदार मुखालिफ।
3: आपके कुछ अशार बेगम साहिबा भी देने को कह रही थी।
4: ले लेना हकीम साहब,
3: रात हो चली है, आप आराम फरमाइए।
5: ए बीबी नूर बहार, जहां पनाने आपको याद फरमाया है।
6: आज कैसे हुजूर का हमारा ख्याल आ गया, अभी साथ चलते हूँ। जिल्ले इलाही कनीस का सलाम कबूल हो, जहे किस्मत हुजूर ने नाचीज को इज्जत बख्शी।
4: नूर बहार हमारी नन्नी भी, आज कुछ तबीयत नहीं लग रही इसलिए तुम्हें बुला भेजा।
6: कनीस तो हर जुमेरात को हुजूर के बुलावे का इंतजार करती है लेकिन मालूम होता है हुजूर हमें भूल गए।
4: ये बहाना सही ना होगा, हम अपनी ही तरह तरह की परेशानियों में उलझे रहे। इस कलाए मोहल्ला के अंदर न दिल को सुख है न दिमाग को। बाग में खिले नरगिस के फूल, आसमान पर उठता हुआ चांद, इन सबको देखे जैसे एक अरसा गुजर गया। कितनी खुशनुमा जगह है ये।
6: हुजूर क्या आप अपने बनवाए हुए महल में चलना पसंद फरमाएंगे? क्या नजारा है, सावन और भादों से झरते झरने, उस पर कयामत की ये चांदनी रात।
4: फजा में नरगिस की महक उठ रही है और तुम्हारा इस तरह आ जाना क्या खूब है। नूर बहार बस ऐसा करो कि सारे गम गलत हो जाएं।
6: आलम पना,
4: तुम्हारी ये चांद सी सूरत देखकर ही हमने तुम्हारा नाम नूर रखा है। फलक से भी तो नूर बरस रहा है जो तुम्हारे कदमों तले सिमट आया है।
6: हुजूर
4: फजा में
7: जैसे खुशबू की लपट।

0: तो सही है। परवरदिगार, तेरी दुनिया में लोगों की नजरों ने खूबसूरती ढूंढी होती।
1: खुदा ने आपको वो करम बख्शा है।
0: जी उचटता है तो कभी कभी अपने मिर्जा की बहुत याद आती है। बेगुनाह को उसी के लोगों ने खत्म कर दिया। वो गजल जो हमने 1846 में मशायरे में पढ़ी थी याद है?
1: आपको अपनी गजलों में वो बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने उसे खास तर्ज और बंदिश में बांधा है। हुक्म हो तो साजिंदों को हाजिर किया जाए।
0: नहीं नूर, बस हमारे वो अशार तरन्नुम से गुनगुना दो।

0: न थी हाल की जब हमें अपने खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर।
1: सुभान अल्लाह।

0: कहो मिर्जा मुगल, सुबह सुबह क्या खबर?
1: अब्बा हुजूर, हमारी फौज दुश्मन पर कयामत बर्पा कर रही है। अब्बा हुजूर, फौजी सिपाहियों ने दादे मर्दानगी दी है हुजूर।
0: क्या परवरदिगार, तू ही मेहरबान है।
1: मुखालिफों के भीड़ की भीड़ मारी गई, लूट में हमारे हाथ बहुत से ऊंट बारूद और बंदूकें लगी हैं।
0: लेकिन हर तरह का इंतजाम भी पक्का रख रहा मिर्जा मुगल। जंग होती है तो लोगों का खून बहता है। जख्मियों के वास्ते कोठी रही झज्जर वाकया दरियागंज खाली करा दो, और जगह बाकी ना हो तो हमारा किला उसके लिए है।
2: मोहल्ला चूड़ी।

0: आप खुद अपने मुंह से दोहराएं।
1: हम भाजपा के सामने सड़क के बीच खड़े हैं, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप बाहर आइए।
2: तो हम तैयार हैं।
3: सबसे आगे मलिका आजम जीनत महल बंद देसी सवारी में आ रही है और उनके पीछे पालकी में बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे।
1: अपने हथियार हमारे हवाले करें।
2: क्या हटसन बहादुर तुम ही हो? सरकार के अल्फाज अपनी जबानी फिर दोहराओगे?
1: हाँ, आप लोगों की जान बख्शी जाएगी, पर याद रहे किसी तरह की नाजायज हरकत करनी चाहिए तो तुमको गोली मार दूंगा। हथियार सुपुर्द करो।
2: ये लो हमारी ताजदारी की निशानी।
1: अब तुम हमारे कैदी हो।
2: ये कैद हमें मिली है। बख खां लौट गया। दिल्ली शहर में अब कहर बरपा हो रहा है। मेरे चांद से टुकड़ों को गोली मार दी गई है। ये दुनिया जो कल तक मेरी थी इस वक्त दुश्मन हो गई है। तमाम उम्र जिन्होंने मेरा नमक खाया आज इन्हीं लोगों ने मेरे मिर्जा मुगल खिजर सुल्तान और अबू बकर को फांसी पर लटकवा दिया। शहजादों के धर कोतवाली से लटक रहे हैं। मेरे सीने में बाप का दिल है। हम तो जिंदा भी मुर्दों से बदतर हैं।
1: शहंशाह हिंदुस्तान, हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। सिपाही, इस कपड़े को उठाकर दिखाओ।
2: मेरे बेटों के कटे हुए सर। तैमूर की औलाद इसी तरह सुर्ख रूह होकर ताप के सामने आया करती।
1: रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी तक ये गुमान, अब तुम पर हम लोगों के खिलाफ बागियों की मदद देने, अपने आप को शहंशाह हिंद कहने और शहजादों और रिया को बगावत के लिए भड़काने के जुर्म में हमारी अंग्रेज सरकार तुम पर संगीन मुकदमा चलाएगी।
4: 1858 के इब्तदाई महीनों की तारीखें पड़ रही हैं और मुकदमा चल रहा है।
2: वही दरो दीवार हैं, वही दीवान खास जिसकी जर निगार सख के नीचे सुनहरे हर्फों में लिखा है कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। जहां मेरी ताज पोशी हुई थी वहीं आज मैं एक मुलजिम की हैसियत से आ रहा हूं। मेरे जो अपने थे जिनकी जबान हुजूर कहते न थकती थी वो सब आज मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं।
5: आज तुम्हारी किस्मत का आखिरी फैसला है।
2: वही फैसला सुनने बुलाया गया हूं। आज दानिशाही मेरी आंखों के सामने तबाह और बर्बाद हुआ। हम पर कड़ाके के फाके गुजरे, मेरे कलेजे के टुकड़े खून में नहाए। इसके बाद भी अगर किसी सजा का मुस्तहिक हूं तो ए खुदा ये तेरी मर्जी।
5: कैदी को टाउन जिला वतनी का हुक्म दिया जाता है।
2: ये वतन जो मुझे जान से भी अजीज है इससे मुझे महरूम किया जा रहा है। इससे बड़ी और क्या सजा होगी? सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार को ए दरो दीवार रुखसत दो। इतनी भी इजाजत नहीं कि एक बार जी भर कर इस चमन को देख सकूं, कलाम अल्लाह की दरो दीवार से लिपट कर रो सकूं। मैं कैदी हूं, कैदी की हैसियत से हमारा काफिला रुखसत हो रहा है। जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले बतौर शम्मा के रोते संजमन से चले, न बागबान ने इजाजत दी सैर करने की, खुशी से आए थे रोते हुए चमन से चले। जो पाए बंद सदाकत है कौल से अपने, कभी न ठोक रखाए अगर चलन से चले।
6: कहां वो किलाए मोल्ला और कहां रंगून के सदर बाजार में लकड़ी का ये दुमंजिला मकान, हमारा कैद खाना।
2: या खुदा, तू जिस हाल में रखे तेरी मर्जी, 85 साल की उम्र में यहाँ रंगून लाए गए हैं। इस उम्र में तो इंसान अपाहज हो जाता है। जिला वतनी की ये जिंदगी हमारे साथ तुम सब भी भुगत रहे हो।
7: वही मुल्ला,
0: आप तस्लीम कहिए, खैरियत तो?
2: बस समझ लो जिंदा हैं। खारिश के बाद फालिज के इस हमले से हालत ऐसी हो गई है कि उठना बैठना भी मुश्किल है। एक मजबूर इंसान हूँ, पर जिस दिन कोई मिलने आता है तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, नहीं तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
0: हुजूर, खुद रंगून के लोगों का दिल भी आपसे मिलने को बेताब है, ये मैं जानता हूँ,
2: पर अब है ही क्या मेरे पास। अपने मिलने वालों को दोनों हाथों से मोहरें लुटा कर देते थे, पर अब तो कभी कोई आता है तो उसे अपने दिल का दर्द गजलों में दे देते हैं। लो, यही तुम्हें भी दे रहे हैं। हो सकता है हमारी आवाज, हमारा दर्द कभी दिल्ली के लोगों तक पहुंच सके।
4: और अब इस गजल को कोई भी नहीं गा सकेगा, ये हमारा हुक्म है। मुल्ला साहब, आप अभी तशरीफ ले जाइए, जो कागज हो वो हमारे हवाले कर दें।
2: कैप्टन नेल्सन साहब, ऐसी क्या बात हो गई?
4: चीफ कमिश्नर कर्नल सर आर्थर ने हमारा कोठी इसलिए इस कैद खाने के पास रखी ताकि हम कैदी की हर हरकत का अंदाजा लगा सकें। इस गजल के जरिए तुम इनकलाब की आग भड़काना चाहता है तो सुन लो, ऊपर से हुक्म आया है कि आज से यहाँ कोई भी मिलने नहीं आ सकता और शहजादे जमा बख्त को मौलमीन भेजा जाता है।
6: ऐसा जुल्म मत कीजिए, हम पर रहम कीजिए, मेरा जमा बख्त।
2: बेगम, ये आंसू पोछ लो, न किसी की आंख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्त गुबार हूँ। न तो मैं किसी का रकीब हूँ न ही मैं किसी का हबीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। आज से मैं अपने दिल का दर्द भी किसी से गजलों में बयान नहीं कर सकता। आज मेरी रूह भी इस कैद खाने में कैद कर दी गई है। अब इस हाल में मैं और जीना नहीं चाहता। मेरे खुदा, तू मेरी मिट्टी समेट ले।
6: अनुपना, कुछ कहिए पर ये ना कहिए, हम किसके सहारे जिएंगे? अनुपना,
2: आखिरी वक्त आ पहुंचा है। शमा अपनी रोशनी समेट रही है। आखिरी लम्हों में कोई मुझसे पूछे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो मैं यही कहूंगा, एक बार मुझे मेरे लोगों से मिला दे, एक बार अपने वतन की खाक अपने हाथ से छुआ कर कोई सजदा कर लेने दे। कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली हुए यार में। शमा गुल हुआ चाहती है। ए वतन हमारा आखिरी सलाम है।
6: जिल्लाही मेरे आलम बना, कोई पास नहीं, रौनक समानी बेगम, सिपाहियों को इत्तला तो कर दो, कि तुम्हारा कैदी निजात

इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह तेरी कुदरत मौत की खबर भी एक राज रहे, इसलिए इसी मकान में दफनाने का हुक्म हुआ है। आइए हाफिज साहब जनाजे की नमाज पढ़कर इस पाक रूह को कब्र में सुला दें, हिंदुस्तान की अमानत को खाक के सुपुर्द कर दें। पर ऐ शाह, तेरे दिल की आवाज आने वाली सदियों तक गूंजती रहेगी।

अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा उमा भटनागर का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान था आखिरी ख्वाहिश। ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा इस वक्त आपने सुना। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलांग के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाई हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। अमरीका और खलीज के उसके हलीफ ममालिक ने एक ताजा अक्वामे मुत्तहिदा करारदाद की तजवीज पेश की है, जिसका मकसद ईरान पर इसके लिए दबाव डालना है कि वो आबनाए हुरमुज में जहाजरानी में खललंदाजी न करे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ईंधन के कौमी जखायर को मुस्तहकम करने के मकसद से 7.2 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के ईंधन की यकीनी फराहमी और रेसिलियंस पैकेज का ऐलान किया है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने किया। उनके हमरा वियतनाम हुकूमत के बहुत से वजीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफद भी है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफद भी है। सदर तोलाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर के तौर पर चुने जाने के बाद भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वियतनाम के अपने हमनसब के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरे पर आए मेहमान से मिलने जाएंगे। वियतनाम के सदर आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम 56वां सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को हालिया तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाई हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को रहनुमाई करने वाला एक मिशन है, कुछ वक्फे के लिए रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजराई को खत्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहिदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ्त की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए आबनाए हुरमुज में जहाजों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौरखोज करने का वक्त मिल जाएगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहिदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से यह कहे जाने के बाद किया है कि ईरान में अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद खत्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरख्वास्त की थी कि उनके जहाजों को लड़ाई में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। मगरबी एशिया की सूरत हाल अब भी गैर मुस्तहकम है और बहुत से अनासिर हैं जिनकी वजह से जंगबंदी को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी के दौरान स्ट्रेटेजिक एतबार से इस अहम आबी गुजरगाह से वाबस्ता अमरीका की तरफ से जारी फौजी सरगर्मी को एक दिफाई ऑपरेशन करार दिया है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीकी फोर्सेज मुमकिन खतरों से सख्ती से निमट रही है और हमले की कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज बहरी असासों को खतरे की सूरत में फौरी कार्रवाई करेगी। जनाब रूबियो ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से बहरी सलामती से मुतालिक इकदाम का भी जिक्र किया, जिसका मकसद आबनाए हुरमुज के रास्ते तिजारती जहाजों को गुजरने में मदद फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
امریکہ اور خلیج کے اس کے حلیف ممالک نے ایک تازہ اقوام متحدہ قرارداد کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد ایران پر اس کے لیے دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں خلل اندازی نہ کرے۔ اس مسودہ قرارداد میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایران جہازوں پر حملے جاری رکھتا ہے، سمندر میں بارودی سرنگیں بچھاتا ہے یا اس اہم آبی گزرگاہ پر غیر قانونی ٹول وصول کرتا ہے تو اسے بندشوں یا دیگر اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قرارداد میں ایران سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ ان مقامات کے بارے میں بتائے کہ جہاں بارودی سرنگیں ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہمی سمیت سامان محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت دے۔ اقوام متحدہ میں اس قرارداد سے پہلے بھی ایک قرارداد چین اور روس کے ویٹو کرنے کے سبب منظور نہیں ہو پائی تھی، اگرچہ اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ آسٹریلیا نے 7.2 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ایندھن کی یقینی فراہمی اور ریسیلینس پیکج کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ ایندھن کے قومی ذخائر کو مستحکم کر سکے اور آئندہ بجٹ تجاویز میں حکومت کے زیر ملکیت مستقل ایندھن ذخائر تیار کر سکے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا کہ اس منصوبے میں تقریباً 1 ارب لیٹر کے بقدر سرکار کے زیر ملکیت ایندھن کا ذخیرہ تیار کرنا شامل ہے جو 50 دن کی مانگ پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا مقصد ملک کو سپلائی میں آنے والی رکاوٹوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ آسٹریلیا اپنا 80% ایندھن بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے اور اب وہ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے سبب اس میں کمی سے دوچار ہے۔ آسٹریلیا کی توانائی سے متعلق وزیر کرس بوون کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی پالیسی تبدیلی ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں آج کچھ کمی درج کی گئی ہے، یہ کمی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کے اعلان کے بعد ہوئی ہے جو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کی غرض سے شروع کی گئی ایک فوجی کوشش ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 1.21% کی کمی کے ساتھ 100.5 امریکی ڈالرز فی بیرل پر آ گئی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اس کی وسیع تر مارکیٹ پریشان کن ہے۔ ملازمین کے ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ جو بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد ہو رہی ہے آج تروونتپورم میں شروع ہوگی۔ اس 2 روزہ میٹنگ میں محنت، روزگار اور کارکنوں کی بہبود پر بات چیت کے لیے برکس کے رکن ممالک کے نمائندے یکجا ہوں گے۔ محنت اور روزگار کی وزارت نے کہا

आन बान फिल्म का नगमा आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मुकेश को फिल्म का नाम है फर्ज़।

एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का नगमा आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में आपने सुना। अब सुनिए आशा भोसले और सुरेश वाडकर को। फिल्म का नाम है परिंदा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। मौजू है संत कबीर, तहरीर महमूद हाशमी की।

विशाल मिश्रा और नीति मोहन की आवाजों में नगमा आपने गदर टू फिल्म से सुना। अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रजीज को आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म है किशन कन्हैया।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो अब नए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बाहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। अमरीका और खलीज के उसके हलीफ ममालिक ने एक ताजा अक़वामे मुत्तहिदा करारदाद की तजवीज पेश की है, जिसका मकसद ईरान पर इस बात के लिए दबाव डालना है कि वह आबनाए हुरमुज में जहाजरानी में खलल न डाले। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने ईंधन के कौमी जखायर को मुस्तहकम करने के मकसद से 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत के ईंधन की यकीनी फराहमी और रेजिलियंस पैकेज का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा तालुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मुफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर तो लाम को आज राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के रहनुमा का खैर मकदम किया। इस मौके पर पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और डॉ जितेंद्र सिंह समेत मरकजी वजरा मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो अब नए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों की रहनुमाई करने वाला एक मिशन है, कुछ वक्फे के लिए रोका जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि महाजाराई को खत्म करने के लिए ईरान के नुमाइंदों के साथ एक जामे मुआहदा किए जाने की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने वजाहत की कि हालिया फौजी कार्रवाई और सिफारती बातचीत की पेशरफ्त की रोशनी में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक मुख्तसर वक्फे के लिए अब नए हुरमुज में जहाजों की इस कार्रवाई को रोकने का एक बाहमी फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्फे से इस बात पर गौरखोज करने का वक्त मिल जाएगा कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक कतई मुआहदा किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से यह कहे जाने के बाद किया गया है कि ईरान में अमरीका इसराइल के इब्तदाई हमले ऑपरेशन इपिक फ्यूरी इस कार्रवाई के मकासद हासिल हो जाने के बाद खत्म कर दिए गए हैं। इतवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक ने अमरीकी मदद के लिए दरखास्त की थी कि उनके जहाजों को लड़ाई में फंसे हुए जहाजों को बाहिफाजत निकाल लिया जाए। मगरबी एशिया की सूरतेहाल अब भी गैर मुस्तहकम है और बहुत से अनासिर हैं, जिसकी वजह से जंगबंदी को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक है। अब नए हुरमुज एक बार फिर टकराव का सबब बन गई है, क्योंकि अमरीकी फौजों ने कमर्शियल जहाजों को रास्तों को महफूज करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को यूएई की तरफ से

0: के नजदीक एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने के एक वाकये में 8 अफराद हलाक और 36 जख्मी हो गए। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार और मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाके में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा कि इन खितों में कल तक 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के नॉट आउट 87 रन और कार्तिक शर्मा के 41 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 156 के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर्स और 3 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो अब नए हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बाहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। अमरीका और खलीज के उसके हलीफ ममालिक ने एक ताजा कौम मुत्तहिदा करारदाद की तजवीज पेश की है जिसका मकसद ईरान पर इस बात के लिए दबाव डालना है कि वह अब नए हुरमुज में जहाजरानी में खलल न डाले। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ईंधन के कौमी जखायर को मुस्तहकम करने के मकसद से 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियस के ईंधन की यकीनी फराहमी और रेजिलियंस पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD Freedish पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो अब नए हॉर्मुज़ में फंसे हुए जहाजों को बाहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। अमरीका और खलीज के उसके हलीफ ममालिक ने एक ताजा अक़वाम मुत्तहदा करारदाद की तजवीज पेश की है, जिसका मकसद ईरान पर इस बात के लिए दबाव डालना है कि वह अब नए हॉर्मुज़ में जहाजरानी में खलल न डाले। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने ईंधन के कौमी जखायर को मुस्तहकम करने के मकसद से 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत के ईंधन की यकीनी फराहमी और रेजिलियंस पैकेज का ऐलान किया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: किया गया था और 1958 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी इसे योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। लाजवंती 1958 की बनी एक भारतीय ड्रामा फिल्म, जैसा कि हमने आपको बताया कि नरेंद्र सूरी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था और ये एक सामाजिक और भावनात्मक हिंदी फिल्म थी जो कि डिलेक्स फिल्म के बैनर तले इसका निर्माण हुआ था। और नरगिस और बलराज साहनी के अलावा इस फिल्म में प्रभुदयाल, मनोरमा, मुमताज बेगम, लीला मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए थे। सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

आशा जी की आवाज में इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत था। फिल्म की कहानी एक ऐसे दंपति के इर्द गिर्द घूमती है जिनके रिश्ते में प्रेम तो है लेकिन परिस्थितियां उनके जीवन में कठिन मोड़ ला देती हैं। बलराज साहनी ने एक संवेदनशील पति का किरदार निभाया जबकि नरगिस ने एक ऐसी पत्नी का रोल निभाया जो जीवन की कठिनाइयों और समाज की कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करती है। नरगिस ने लाजवंती के किरदार में नारी के धैर्य संवेदना और आत्मसम्मान को बखूबी निभाया। वही बलराज साहनी ने एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जो भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ दिखाई देता है। यानी कि फिल्म रिश्तों की नाजुकता, विश्वास और समाज की सोच को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए। आज तुम्हें हम कैसे भाए?
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची। ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो

0: तुम्हारी माँ भी मामा प्यारे, रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी दूर।

जी सुपर डुपर हिट गीत इस फिल्म का मन्ना डे आशा भोसले और साथियों की आवाज में इतना मधुर गीत कि मन करता है इस गीत को बार बार सुना जाए। लेकिन और भी गीत हैं इस फिल्म के जो अपने आप में इतने मधुर हैं कि जो मिठास उस वक्त थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इतने सालों बाद आज भी वही मिठास कायम रखते हैं। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार SD बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म के गीत मधुर भी हैं और अर्थपूर्ण भी थे। उस दौर में गीत कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम हुआ करते थे और लाजवंती इसका सुंदर उदाहरण है। अगर हम अभिनय की बात करें तो ये फिल्म दो महान कलाकारों की अदाकारी का एक शानदार उदाहरण है। बलराज साहनी अपने सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनके संवाद बोलने का अंदाज इतना स्वाभाविक था कि लगता ही नहीं था कि वे अभिनय कर रहे हैं। वहीं नरगिस

हर भाव को आंखों से जिया। दुख, खुशी, मौन, पीड़ा सब कुछ उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया था। और आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म मानवीय रिश्तों पर आधारित गंभीर विषय को लेकर आई थी, इसीलिए इसे समीक्षकों ने भी खूब सहारा था। नरगिस उस समय सामाजिक और भावनात्मक भूमिकाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध थी और इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तो बलराज साहनी साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने अपने किरदार को वास्तविक बनाने के लिए बहुत तैयारी की, इसीलिए उनके अभिनय में सहजता दिखती है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज हम लेकर आए हैं 1958 की फिल्म लाजवंती। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी सीधे तौर पर मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी की एक संवेदनशील कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद के हालात और खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर लिखी गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि उस समय इस तरह के विषय पर फिल्म बनाना काफी साहस की बात मानी जाती थी। समाज में ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन निर्देशक नरेंद्र सूरी ने इसे बड़े संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारने का जोखिम लिया और उनके इस जोखिम को दर्शकों ने बहुत सारा प्रेम दिया। फिल्म के दौरान नरगिस अपने किरदार में इतनी डूब जाती थी कि कई बार सीन खत्म होने के बाद भी वे उसी भाव में रहती थी। यूनिट के लोग बताते हैं कि एक इमोशनल सीन के बाद सेट पर कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, इतना असरदार था उनका अभिनय यानी कि नरगिस जी का। इस फिल्म की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं है बल्कि उसका साहस भी है। उस दौर में जब हल्की फुल्की मनोरंजन वाली फिल्में ज्यादा बनती थी, लाजवंती ने गंभीर सामाजिक मुद्दे को छूकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया था। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, बस अब वक्त है उन संदेशों को मैं शामिल करूं।

बीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग ये हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। और अगला संदेश हमारे पास जो पहुंचा है वो गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी सौरभ प्रमोद जी का आया है। और नेहरू चौक पैठण से सुरेश अनीता सोनल जाधव जी हमारे साथ हैं। राजू अग्रवाल केशव प्रियांशी चौधरी बास हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामोरी अजय देव मास्टर कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत और पूरा परिवार इनके साथ है। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। गांव हीरावाली फालसिका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती जी हमारे साथ हैं। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम जी हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग परेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन और संयम मुस्कान जी हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी यूसरा जान इम्तियाज जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम समलडी नवापारा से मुकेश अदिति श्रद्धा राधे और दीपक जी हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती वर्मा विनीता रुद्र जी हैं। वटिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती जी हैं। और अगला जो संदेश हमारे पास पहुंचा है वो कनाट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक हिवा आयसा जोया जी का है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल गाव्या मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। ये संदेश छोटी बलिया करचस से अहमद बाई दुखनी जी जुड़े हुए हैं। बेवली मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर सुनीता हार्दिक जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहला चौकुंडी बुलसन से मोहम्मद सिद्धवासी निगत परवीन शेनवास सरफराज परिवार के सभी सदस्य हैं हमारे साथ। चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा जी हमारे साथ हैं। और इसके बाद कुछ संदेश रिपीट हो रहे हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद जी हैं। नरवेश नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नोहानकर निर्मला विशाल जी हैं। अनिल मोहन उषा मोहन टीलू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से केथल से मधु नायक जी हैं। और भी हमारे ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की फिल्म लाजवंती जिसकी कहानी में स्त्री की गरिमा और समाज की नजरिए को जिस तरीके से दिखाया गया है वो अपने समय से काफी आगे था। और यही वजह है कि आज भी जब पुरानी संवेदनशील फिल्मों की बात होती है तो लाजवंती का नाम जरूर लिया जाता है। तो इसी के साथ अब अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम में एक नई फिल्म लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: समाचार। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम नाल गलबात कर रहे ने। तमिलनाडु विच टीवीके दे संस्थापक सी जोशो विजय दी अगुवाई च नवी सरकार बनाउण लई राजनीतिक गलबात तेज होई। असाम च मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने अज राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नूं अपना अस्तीफा सौंपिया। सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा ना देने बारे तृणमूल कांग्रेस मुखी ममता बैनर्जी दे बयान दी आलोचना कीती। पंजाब पुलिस मुखी ने सूबे च होए दोहरे धमाकियां लई पाकिस्तान दी आईएसआई नूं जिम्मेवार दस्या। अते आईपीएल क्रिकेट विच पंजाब किंग्स दा मुकाबला हैदराबाद च शामी 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद नाल होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली च वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम नाल गलबात कर रहे ने। दोवां आगुआं वल्लों दुवल्ले संबंधां दे वख-वख पहलुआं दे नालों नाल आपसी हित दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते व्यापक चर्चा करन दी उम्मीद है। भारत दे 3 दिना दौरे ते आए तो लाम दा राष्ट्रपति भवन विखे रस्मी स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां दा स्वागत किया। इस मौके पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव ते डॉ जितेंद्र सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति तोलाम ने राजघाट ते महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भी भेंट कीती। साडे पत्रकार ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते वियतनाम दे राष्ट्रपति दरम्यान गलबात तों बाद कई समझौतियां ते दस्तखत कीते जाण दी उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम राष्ट्रपति भवन विखे अपने वियतनाम दे हमरुतबा नाल मुलाकात करनगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मेहमान नाल मुलाकात करेंगे। श्रीलाम आज इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर वालों आयोजित 56वें सप्रू हाउस भाषण नूं भी देंगे। राष्ट्रपति लाम दी इह फेरी दोवां मुल्कां दे संबंधां नूं इक व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक उचा चुकन दी 10वीं वरेगंढ दे विशेष मौके नाल मेल खांदी है, जिस ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी 2016 च वियतनाम फेरी दौरान सहमति बनी सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ते तेलंगाना दे 19 जिलों च रेलवे प्रोजेक्टां नूं मंत्रिमंडल दी प्रवानगी दा स्वागत कीता। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि इह प्रोजेक्ट संपर्क वधाउणगे ते संचालन कुशलता विच सुधार करनगे, नाल ही देश दे बुनियादी ढांचे ते आर्थिक विकास नूं भी उत्साहित करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इह प्रोजेक्ट देश भर दे प्रमुख सैर सपाटा स्थानां तक पहुंच नूं होर बेहतर बनाउणा करेंगे। श्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में जजां की गिनती 33 तो वधा के 37 करने के मंत्रिमंडल के फैसले की भी शलाघा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की न्याय प्रणाली नूं मजबूत करेगा ते लोकां लई तेजी नाल न्याय यकीनी बनाएगा। चोन कमिशन ने असाम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु ते पछमी बंगाल च नवीं विधानसभावां दे गठन लई संबंधित राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे राज्यपालां ते उपराज्यपालां नूं नोटिफिकेशन जारी कर दित्ते ने। इन्हां चार राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चोणां दे नतीजे कल ऐलाने गए। चोन कमिशन ने पछमी बंगाल, असाम, केरल, तमिलनाडु ते पुडुचेरी च नवीं विधानसभा दे गठन लई नोटिफिकेशन जारी कीते ने। इस नाल इन्हां राज्यां विच चोण प्रक्रिया रस्मी तौर ते समाप्त हो जांदी है, जिस नाल नवीं सरकारां दे गठन दा राह पधरा हुंदा है। कमिशन ने कहा है कि नतीजे ऐलाने जाण तों बाद नोटिफिकेशन जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है। इह सरकार दे गठन दे अगले कदमां नूं स्थापित प्रक्रियावां मुताबक शुरू करन दी इजाजत दिंदा है। तमिलनाडु विच टीवीके दे संस्थापक सी जोशो विजय दी अगुवाई विच नवी सरकार बनाउण लई राजनीतिक गलबात तेज हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा चोणां च 108 सीटां जित के टीवीके सब तों वड्डी पार्टी वजो उभरी है। बहुमत लई 118 सीटां दी लोड़ है। राज दे राजपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर अज दुपहर बाद केरल तों चेन्नई पहुंचणगे। नामजद मुख्यमंत्री सी जोशो विजय अज शाम नूं राजपाल नूं मिलणगे ते सरकार बनाउण दा दावा पेश करन लई पत्र सौंपणगे। तमिलनाडु विच विजय दी अगुवाई वाली टीवीके सरकार नूं समर्थन देण लई पार्टियां विच गलबात रही है। कांग्रेस जिसके 5 विधायक ने टीवीके का समर्थन करने का फैसला किया है। यह फैसला तमिलनाडु के इंचार्ज

0: IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋ ਲਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਆਦਾਬ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਖ਼ਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਖਾਨ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत कर रहे हैं कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद चार रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं तमिलनाडु में TVK आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शाम आसाम बिहार केरलम तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दौरे पर आए हुए वियतनाम के सदर तो लाम के साथ बातचीत कर रहे हैं तवक्को है कि दोनों रहनुमा बाहमी उमूर के बहुत से पहलुओं पर तबादले ख्याल कर रहे हैं और कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए जनाब तो लाम भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं उन्हें आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाजाब्ता इस्तकबालिया दिया गया राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया तमिलनाडु में TVK के बानी सी जोसफ विजय की सरबराही में नई सरकार की तश्कील के लिए सियासी बातचीत तेज हो गई है उनकी पार्टी 118 के अक्सरियत के निशाने से कम है रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सहपहर केरला से चेन्नई पहुंचने वाले हैं जनाब सी जोसफ विजय आज शाम गवर्नर से मुलाकात करेंगे और हुकूमत तश्कील देने के लिए दावा पेश करेंगे कांग्रेस ने जिसके पास 5 MLAs हैं TVK को हिमायत देने का फैसला किया है यह फैसला असेंबली के 9 मुंतखब अरकान की एक मीटिंग के बाद किया गया इस दौरान किल्योर असेंबली हलके से 3 मरतबा कांग्रेस MLA राजेश कुमार को रियासती असेंबली में कांग्रेस का रहनुमा मुंतखब किया गया है मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी TVK की क्यादत वाली सरकार की हिमायत करेगी तमिलनाडु में TVK को कांग्रेस की जानिब से हिमायत दिए जाने के बारे में DMK की रहनुमा और तर्जुमान कनिमोजी सोमू ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो यह DMK के साथ एक बड़ा धोखा है उन्होंने कहा कि DMK हर मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के साथ खड़ी रही है तमिलनाडु में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी TVK को जिसने 108 असेंबली सीटें जीती हैं अक्सरियत के निशाने 118 तक पहुंचने के लिए 11 अरकान असेंबली की जरूरत है TVK कांग्रेस समेत दिगर पार्टियों के साथ इस सिलसिले में बातचीत कर रही है कांग्रेस के तर्जुमान गिरीश चोडंकर ने कहा कि TVK को हिमायत दिए जाने का फैसला मीटिंग के बाद किया जाएगा मगरबी बंगाल में चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद और नई हुकूमत की हलफबरदारी से पहले रियासती इंतजामिया की तैयारियां उरूज पर हैं बीजेपी जराये के मुताबिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं और मुमकिन है कि वो 9 मुंतखब बीजेपी अरकान असेंबली से मुलाकात के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान करेंगे हलफबरदारी की तकरीब जल्द ही मुतवक्के है तफसील हमारे नामा निगार से
2: हुकूमत की तशकील का आईनी अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है मगरबी बंगाल के आला इंतखाबी अफसर मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव कमीशन के नुमाइंदों के साथ आज गवर्नर से मुलाकात की और रियासत की तमाम 293 असेंबली सीटों के नतायज का गजट नोटिफिकेशन पेश किया नई हुकूमत की तश्कील का बाकायदा अमल उस वक्त शुरू होगा जब गवर्नर को सरकारी इंतखाबी नतायज मौसूल होंगे गवर्नर इस बात पर भी फैसला कर सकते हैं कि नई हुकूमत के बाजाबता हलफ उठाने तक उबूरी इंतजामी निजाम

0: किस तरह काम करेगा। इसी दौरान सुभगदोश होने वाली वजीराला ममता बनर्जी के मौकिफ ने सूरतेहाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ममता बनर्जी ने मंगल के रोज वादे किया कि वो इस्तीफा देने के लिए लोक भवन नहीं जाएंगी। इस सियासी कशीदगी के पस मंजर में बंगाल में इंतजामी मुंतकली की तैयारियां अब एक फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: आसाम के वजीराला हेमंत बिस्वा सरमा ने आज असेंबली इंतखाबात के अमल के मुकम्मल होने के बाद गुवाहाटी में बाकी राजभवन में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इंतखाबी नतीजों के ऐलान के बाद उनके इस इस्तीफे से रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए राह हमवार हो गई है। इससे कबल आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने असेंबली इंतखाबात के नतीज बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर को पेश किए और नौ मंतखब अरकान असम्बली की फहरिस्त भी उन्हें सौंपी। हालिया असम्बली इंतखाबात में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है। बीजेपी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके इत्तेहादी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और आसाम गण परिषद ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस 19 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते हैं, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस मुबैना बयान की मजम्मत की है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जवाबदेही की मजाहमत और आवाम के फैसले को कबूल करने से इनकार करना बंगाल में जमहूरी निजाम को कमजोर करने की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ आवाम के फैसले को मुस्तरद कर रही हैं, बल्कि चुनाव कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे इदारों की साख को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों का अहाता करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी का खैरमकदम किया है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, कामकाज की कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, नीज मुल्क के बुनियादी ढांचे और इकतसादी तरक्की को भी फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से मुल्क भर के अहम सियाहती मकामात तक पहुंचना मजीद आसान होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का काबीना के फैसले को भी सराहा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआईएस की एक साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। अमेरिका में भारत निजाद रिपब्लिकन रहनुमा विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामजद 87% वोट हासिल करके जीत ली है। उन्होंने केसी पुत्श को शिकस्त दी। अब आइंदा नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्सटन से होगा। रामास्वामी ने 2024 में मुख्तसर अरसे के लिए ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बाद में उनकी हिमायत का ऐलान किया। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले इस एकतरफा जंगबंदी से चंद घंटे कबल हुए जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना था। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी इलाके, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाज मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान, निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाज मकामात पर गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल नई दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ویتنام کے صدر کے ساتھ بات چیت کی۔

0: کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ اسمبلی انتخابات کے نتیجوں کے بعد چار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے آج شام حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرے گی۔ آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے 15ویں ریاستی اسمبلی کو تحلیل کیے جانے کے بعد اپنا استعفی سونپا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام، بہار، کیرالم، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today, and in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad to take on Punjab Kings in the evening. And now the news in detail. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We now go over live at Hyderabad House, where Prime Minister Narendra Modi is briefing the media on the outcomes of the talks.
2: Fast payment system bhi jald hi link hone ja rahe hain. Saath hi, ab hum dono deshon ke beech state to state aur city to city cooperation ko bhi majboot karne ja rahe hain. Friends, Vietnam भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बीजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है।
1: In Tamil Nadu, political parleys to form a new government under Tamilagavit Threekadagam TVK founder C. Joseph Vijay has intensified as his party is short of majority figure of 118. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar is to arrive in Chennai later this afternoon from Kerala. The Chief Minister designate C. Joseph

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय

0: सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाले किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
1: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौलों में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉ शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
4: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
5: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने

के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 और पूरे 15 सेकंड हुए हैं। वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी हीरो के जैसे नहीं होते हैं, न ही उनकी आवाज में वो भारीपन होता है, मगर जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो ठहर जाती है हर एक नजर। वो कभी मुनीम जी बनकर हिसाब मांगते तो कभी लालची साहूकार बनकर आंखें दिखाते, मगर असल में वो अपनी सादगी से हर दिल को जीत ले जाते। जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। और कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज एक ऐसे कलाकार को याद करेंगे हम जिसके बिना बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर अधूरा सा लगता है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी नेजल वॉइस से, यानी कि नाक वाली आवाज से, और अपने एक अलग ही अनोखे अंदाज से छोटे छोटे किरदारों को भी असरदार बना दिया। वो किरदार कभी बहुत बड़े रूप में फिल्मों में नहीं आया, छोटे छोटे उसने किरदार निभाए, लेकिन वो छोटे छोटे किरदार भी उसकी एक पहचान बन गए। जी दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम उसी कलाकार के नाम, उस कलाकार का नाम चंद्रशेखर दुबे, यानी कि हम सबके चहे थे सी.एस. दुबे साहब।

जी दोस्तों, जब भी सीएस दुबे साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम आता है तो जहन में कैसे शख्स की छवि उभर आती है जो या तो पर्दे पर डांट खा रहा होता है या फिर किसी के सामने कुछ चालाकी से कुछ हरकतें कर रहा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक लय था। वो शब्दों को कुछ इस तरह से चबा करके बोलते थे कि दर्शक कभी उन्हें भूल ही नहीं पाए और ना ही भूल पाएंगे। आप देखिए, जब भी वो सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते तो उनको देखने के बाद में या तो हमारे जहन में उनके लिए नफरत आ जाती थी या उनको देख के हंसी आ जाती थी, क्योंकि वो किरदार में इस कदर डूब जाते थे कि वो किरदार बिल्कुल रियल जैसा लगता था। चाहे शोले का वो दृश्य हो जहां पे वो गांव वालों के बीच में खड़े थे, या नमक हलाल, जंजीर, शान जैसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना तक हर बड़े सितारे के साथ एक अलग लाइन में काम किया। वो एक ऐसे अभिनेता थे, अभिनेता कहना शायद मतलब एक उनके लिए कुछ कम शब्द होंगे, उनके लिए कह सकते हैं कि वो एक अभिनय की संस्था थे जहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए था। और वो उन चंद कलाकारों में से थे जिन्हें संवाद रटने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि वो किरदार को पूरी तरह से जीते थे। आज के दौर में अगर हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बात करें तो जो दुबे साहब हैं उनका नाम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सीएस दुबे साहब के बारे में। सीएस दुबे साहब के फिल्मी सफर के शुरुआत की जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। जितना उनका अभिनय दिलचस्प रहा उतना ही उनका ये फिल्मी सफर रहा। दोस्तों, जो सीएस दुबे साहब हैं वो बिल्कुल भी अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस किया करते थे, लोगों की मदद करना ये उनका पसंदीदा काम था। रंगमंच भी वो किया करते थे, थिएटर उनको ज़्यादा पसंद था। और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया और मशहूर पृथ्वी थिएटर में सालों तक उन्होंने काम किया। पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ उन्होंने अभिनय की जो बारीकियाँ सीखी वो पूरा टाइम आगे पूरी जिंदगी उनके काम आई और वही उनकी पहचान बनी। पहला ब्रेक जो उनको मिला फिल्मों में वो सन 1950 में मिला और उसके बाद उनकी फिल्म आई पतिता 1953 में, जिसमें उनके साथ देवानंद और सुचित्रा सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और फिल्म पतिता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हालांकि उन्हें जो असली पहचान मिली वो मिली 60 और 70 के दशक में, जब मसाला फिल्मों का काफ़ी बड़ा बाजार था और वहाँ पर उन्होंने कभी विलन के चमचे का रोल, कभी चालाक मुनीम का किरदार निभाया। और दोस्तों, जो सपना उन्होंने देखा कि मुंबई आएंगे काम करेंगे, वो सफ़र उन्हें बहुत आसानी से नहीं मिला, बल्कि उसके लिए उन्होंने किया काफ़ी सारा स्ट्रगल। जब वो मुंबई आए तो उनके पास ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही खूबसूरत सा चॉकलेटी लुक। उनके पास थी तो बस वो अपनी अलग सी अनोखी सी आवाज। करेंगे इस बारे में और भी बातें, लेकिन पहले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सी एस दुबे जी के बारे में। मुंबई आए बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी पीछे सपोर्ट के। शुरुआत में छोटे छोटे रोल उन्हें मिले और उस दौरान कभी भीड़ का हिस्सा भी बने और कभी सिर्फ एक लाइन बोली, लेकिन उनकी प्रतिभा जो थी वो ऐसी नहीं थी कि कोई रोके रोक सके। और शायद यही वजह थी कि निर्देशक विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज निर्देशकों ने भी उन्हें नोटिस किया, नोटिस करने पर मजबूर किया उनकी कलाकारी ने, उनकी अदाकारी ने। और धीरे धीरे वो हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए। फिल्म में अगर किसी ऐसे किरदार की ज़रूरत होती जो कि चालाक भी हो, जिसकी शक्ल पे चालाकी नज़र आए लेकिन उसे देखकर हंसी भी आए और गुस्सा भी आए, तो बस समझ जाइए कि वो किरदार सिर्फ और सिर्फ सी एस दुबे साहब के लिए लिखा गया है। और 60, 70 और 80 के दशक में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म होगी जिसमें दुबे साहब का चेहरा नजर ना आया हो। उन्होंने अपने इस लंबे फिल्मी सफर में 250 से लेकर 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी मेन विलन थे ही नहीं। जी हाँ, मेन विलन वो कभी नहीं रहे, उन्होंने हमेशा विलन का दायां हाथ बनना पसंद किया या उनका चालाक जो सलाहकार होता था, जो उन्हें सलाह देता था, जिसके बिना विलन का कोई भी प्लान काम ही नहीं करता था। और शायद यही वजह थी कि हर फिल्म में विलन के साथ में नजर आते थे सी एस दुबे साहब।

जी हाँ दोस्तों, फिल्में अगर कोई भी आती थी उस दौरान में पर्दे पर, अगर सीएस दुबे ना हो किसी फिल्म में तो उस फिल्म में नूर ही नहीं होता था। जी हाँ, राज कपूर, देवानंद, सभी के साथ उन्होंने काम किया, अभिनय की बारीकियों को समझा। राजेश खन्ना साहब के दौर में वो फिल्मों का एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा बन गए कि उनके बिना फिल्म बने ऐसा हो ही नहीं सकता। और अमिताभ बच्चन साहब का जब एंग्री यंग मैन वाला दौर आया तो दुबे साहब जी अक्सर उन किरदारों में नजर आते थे जो बेचारे होते थे एकदम सिस्टम की मार झेलते हुए, या फिर ऐसे खड़ूस या ऐसे काहिया लोग बनते कि जो सिस्टम का फायदा उठाते थे। और छोटे छोटे दृश्यों में, छोटी छोटी जगहों पर वो आते थे, लेकिन उतने छोटे से बीच में भी वो अपनी एक अलग सी छाप छोड़ देते थे। कभी भी उन्होंने होड़ नहीं की कि वो एक बड़े कलाकार बने या पूरी फिल्म में उनको बड़ा रोल मिले। और शायद यही वजह थी कि अभिनय के स्कूल ऑफ ड्रामा का जो स्कूल है उसमें बच्चों के लिए वो एक मिसाल के रूप में आते हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म है उस फिल्म में उनका किरदार एक ऐसा किरदार होता है जिसके बिना उस फिल्म की कोई अहमियत नहीं होती, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है फिल्म का। वैसे ही जैसे हमारे इस कार्यक्रम का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे सभी लिसनर्स, और उन्हीं के संदेश हमारे सामने रखे हुए हैं जिन्हें हम ले लेते हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू स्वर्णकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा। और मेरठ से दिग्दर्शन कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक और अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हैं खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलिमा फातिमा। शाहजी बोड़खे हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जामदाड़े के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से। चिरमिरे कुरासिया कालरी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे। बहुत बड़ा सा संदेश हम तक पहुंचाया है अनिल मोहन जी ने, और ये संदेश इन्होंने पहुंचाया कैथल हरियाणा से। लिखते हैं कि शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सी एस दुबे जी डायरेक्टर भी थे, और सन 1961 में आई फिल्म किस्मत पलट के देख, जिसमें अनूप कुमार और प्रीति बाला लीड रोल में थे, वो सी एस दुबे जी ने ही बनाई थी। बहुत खूब, बहुत अच्छी।

जानकारी आपने दी अनिल जी, और बहुत सारी इन्होंने हम तक जानकारी दी है, लेकिन वक्त की कमी है तो क्षमा चाहूंगी अनिल जी कि ये संदेश पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है। अगला संदेश तुलसी मस्कीन जी ने हम तक पहुंचाया एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से। वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित किशोर रिधान खुराना जी के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक आया और उसको पहुंचाने वाले हैं जगराम साहू जी, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू के साथ। और ये संदेश इन्होंने भेजा है हम तक ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है और इसको पहुंचाने वाले हैं, ये संदेश भेजा है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर जी ने, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालोद, छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं अनिल मोहन जी एक बार फिर से, नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नववानकर, निर्मला विशाल नववानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपरकोट मोहम्मला चौकटी बुलंदशहर से, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार सहगल जी के साथ। चंडीगढ़ सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं सतीश अनेजा, विमल अनेजा के साथ। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। गांव फरा से जिला हिसार से जुड़े हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और ये अगला संदेश हम तक एक बार फिर से पहुंचाया तुलसी मस्कीन जी ने। और दोस्तों ये थे वो संदेश। स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। दोस्तों जो कार्यक्रम है इसमें आज आपने बात की सीएस दुबे जी के बारे में, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी पुरानी फिल्म में उस टेढ़ी सी मुस्कान या अलग सी आवाज को डायलॉग बोलते हुए देखेंगे ना, तो याद रखिए वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि सिनेमा के उस गोल्डन पीरियड की वो कड़ी है जिसने उस वक्त को जोड़े रखा है। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि कलाकार मरते हैं लेकिन कला उन्हें अमर रखती है, और दुबे साहब ने हमें बिल्कुल यही सिखाया है कि पर्दे पर आप भले ही कुछ पलों के लिए आए वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उन चंद पलों में, उन कुछ मिनटों में आप लोगों के दिलों पर कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। तो दोस्तों आज का ये सफर बस इतना ही, मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। अपना ख्याल रखिए, अपनों का साथ निभाइए, सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। मुझे दीजिए अनुमति, छोड़ जाती हूँ आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज में। नमस्कार।

एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जवाबदेही की मुजाहमत और आवाम के फैसले को कबूल करने से इनकार करना बंगाल में जमहूरी निजाम को कमजोर करने की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ आवाम के फैसले को मुस्तरद कर रही हैं बल्कि चुनाव कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे इदारों की साख को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर टो लैम के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी उमूर के बहुत से पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। जनाब टोलोम भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्हें आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाजाबता तौर पर इस्तकबालिया दिया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों का इहादा करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों के लिए मरकजी काबीना की मंजूरी का खैर मकदम किया है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि प्रोजेक्ट्स रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, कामकाज की कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, निज मुल्क के बुनियादी ढांचे और इकतसादी तरक्की को भी फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से मुल्क भर के अहम सियाहती मकामात तक पहुंचना मजीद आसान होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के काबीना के फैसले को भी सराहा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुल्क के अदालती निजाम को मजबूती मिलेगी और आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को बायोलॉजिकल जहर देने की आईएसआईएस की एक साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। मुलजमीन ने दौलत इस्लामिया से वाबस्ता बैरून मुल्क मुकीम अपने आकाओं की हिदायत पर काम करते हुए नौजवानों को भर्ती करने के लिए उनसे मिलजुल कर काम किया था ताकि जिहाद में मदद दी जा सके और ममनुआ हथियारों नीज बायो टेररिज्म के जरिए दहशत फैलाई जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली डिजिटल तौर पर तब्दीलशुदा एक वीडियो को बेनकाब किया है जिसमें दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के हवाले से दावा किया गया था कि पिछले साल 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के सिस्टम्स को जाम कर दिया था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हकायक का पता लगाने वाले यूनिट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजाहत की कि वीडियो एआई से तैयार करदा डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स गलत मालूमात फैलाने के लिए शेयर कर रहे हैं। मस्कुरा यूनिट ने शहरियों से अपील की है कि वो ऐसी वीडियोज के झांसे में न आए और मुश्तबा मवाद की तिला 8799711259 पर या ईमेल आईडी factcheck@piib.gov.in पर दें। वेव्स डॉग बाजार का दूसरा एडिशन अगले महीने की 16 से 18 तारीख तक मुंबई के एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में 19वीं बैनल्कवामी फिल्म फेस्टिवल एमआईएफएफ के साथ मुनाकिद हो रहा है। वेव्स डॉग बाजार एक मुमताज प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और मुख्तसर फिल्में बनाने वालों की हौसला अफजाई और उनकी तरक्की में मदद फराहम करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इश्तराक रहनुमाई, मार्केट तक रसाई और आलमी सतह पर पहचान के मौके फराहम किए जाते हैं। बाजार के अहम अज्जा में व्यूइंग रूम शामिल है जहां हाल ही में मुकम्मल होने वाली या प्रोडक्शन के बाद के मरहले में मौजूद डॉक्यूमेंट्री, मुख्तसर और एनिमेशन फिल्में रजिस्टर्ड मंदूबीन के चुनिंदा नाजरीन के सामने पेश की जाएंगी। अमेरिका में भारत नजाद रिपब्लिकन रहनुमा विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामजदगी 87% वोट हासिल करके जीत ली है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया था। यूक्रेन के मशरक इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले यकतरफा जगबंदी से चंद घंटे कबल हुए जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में टीवी के आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्वा

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे सावन भादो फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था सोनिक ओमी ने। और सामीन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामीन के लिए, काला सोना फिल्म का नगमा, आवाज़ें आशा भोसले और दैनिकी, मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

0: मजीद सामी, आप जुड़वा भाई और जुड़वा बहनों से तो वाकिफ होंगे, लेकिन जुड़वा नाटकों से शायद आपका साबका कम ही पड़ा होगा। आज आप सुनेंगे जुड़वा नाटक। तो पहले मिलिए मॉडर्न अलादीन से। अलादीन साहब अलफ लैला ने अपना तमाशा दिखाकर गायब हो गए थे। जनाब फिक्र तौसवी ने उन्हें पहचान लिया और लफ्जों में घेर कर राजेश्वर नाथ के सुपुर्द कर दिया, जो उन्हें आवाजों की दुनिया में ले आए। तो आप हैं मॉडर्न अलादीन।
1: आए कौन है मुआ? अरे दरवाजा खोलेगा क्या?
2: कुछ दे दे दादा ये नाम
1: पर। इन भिखारियों के नाम पे दम कर रखा है। अरे जनन जनो कुछ और है, जाकर घी मांगा करो। अरे जो भिखारी आता है सीधा हमारे घर का रुख करता है। क्या है मां कर बाबा? डैडी आप
3: देखा कैसा बुद्धू बनाया तुम्हें। चलो अंदर आओ आओ।
1: मैं सभी सचमुच को भिखारी।
3: अरे रामधन को भी अपने द्वार का भिखारी ही समझो।
1: सच कहते हो, काश मैं भी किसी भिखारी से ब्याही जाती, क्योंकि कुछ भिखारी तुम जैसों से ज्यादा वारदात होते
3: हैं। ठंडी आहें मत भरो डार्लिंग, ठंडी आहें मत भरो। मैंने अर्ज किया ना, इस नाचीज को भिखारी ही समझो। तुम्हारे माँ बाप से एक गलती हुई कि तुम्हारे लिए खाबिन तो सही सही चुना, लेकिन तुम्हारा नाम गलत रखा, लक्ष्मी। दौलत की देवी को भिखारी के पल्ले से बांध दिया।
1: इतना हंसी क्यों जा रहे हो?
3: अरे नहीं भाई, आज मैंने 99 रुपए कमाए 99। ये लो पीतल का ये चरा, कबाड़िया इसके 100 रुपए मांगता था, 100 मैं 1 रुपए में ले आया, 99 रुपए कमाए के नहीं। बोलो बोलो
1: 99 फीसदी कमाए। मगर एक बेवकूफी भी की।
3: फरमाइए।
1: अगर झूठ मूठ ही कमाना था तो कम से कम तो 1000 की चीज 1 रुपए में लाते। 999 रुपए तो बचते। क्या कूड़ा करके जाकर घर में ला दो, बेकार 1 रुपया भी बर्बाद।
3: ये कूड़ा करकट है देवी जी, ये तारीखी चराग है, तारीखी चराग। जहांगीर बादशाह इसकी रोशनी में बैठकर तुझके जहांगीर लिखा करता था।
1: मुझे भी इतना मैला कुचैला है।
3: कहा ना तारीखी चराग है, तारीख की मनोगर्द इस पर पड़ी हुई है। लो जरा इसे रगड़ रगड़ कर मांज तो दो, अंदर से बिल कुल नूर जहां की तरह चमकीला निकल आएगा।
1: मुझे तो पूछती है हमारे किस काम आएगा।
3: अरे जब कभी बिजली फेल हो जाएगी इसे रोशन कर लेंगे, और फिर मैं इसकी रोशनी में बैठकर तुझके जहांगीरी लिखा करूंगा।
1: तुम्हारा मतलब दफ्तर की फाइल है?
3: और मेरी नूर जहां इसकी रोशनी में बैठकर वो आटा गूंदा करेगी।
1: आते घर में कोई काम की चीज लाए भी हो?
3: हाँ एक चीज बहुत शानदार लाया था।
1: कौन सी?
3: तुम्हें इस घर में लाया था।
1: छोड़ो भी ना, मुझे तो चला। मैं इसी आंगन में बैठकर मांझती हूँ।
3: मगर जरा एहतियात से मांझना, चराग शाही मिजाज का है, कभी इसका मिजाज बरहम ना हो जाए, समझे?

0: अच्छा अच्छा अच्छा अरे सुनो मैं तो भूल ही गई, थोड़ा दूध का ख्याल रखना कहीं बिल्ली ना पी जाए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बिल्ली, मैं सोचू है खा के बिल्ली कहाँ चले कहाँ चले।

0: क्या हुआ लक्ष्मी, क्या हुआ?
1: बोल अलादी, मैं तेरा गुलाम, हुकुम दो बजा
2: लाऊं। ओ भगवान, मैंने कहा देव साहब माफ करना, ये अलादीन नहीं है, ये तो लक्ष्मी है, ओनली लक्ष्मी, ओनली मेरी बीवी, माय वाइफ। अलादीन तो एक मोची है, उधर स्लम एरिया में रहता है।
1: नहीं, ये अलादीन है,
2: मुझसे कसम ले लो, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कहो तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दू।
1: हम कुछ नहीं जानते, इसके पास भी ये चिराग होगा, उसका नाम अलादीन होगा। बोल बोल अलादीन, हुकुम दे।
2: अरे यार देव, मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा?
1: देव।
2: ये तो तुम्हारा तकल्लुस है, नाम तो कुछ और होगा कि नहीं? रामदेव, शामदेव, निरंजन देव, हरभजन देव।
1: हमारा वक्त जाया मत करो, अलादीन हुकुम दो।
2: देखिए जनाब देव साहब, जरा आहिस्ता बोलिए ना, देखते नहीं तुम्हारी अलादीन मेरी बीवी की तुमने क्या दुर्गत बना दी है? हुक्म कहाँ से दे? उस बेचारी का तो डर के मारे हलाका खुश हो रहा है।
1: एक मिनट अलादीन, हमको हुक्म दो, वरना एक मिनट के बाद तुझे हम
2: मारेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत कर, मेरी एक लौती बीवी है, इसे वैश्य देव से बचा। देव जी, मैंने कहा देव जी, उस खुदास का खौफ खा जिसने तुझे इतनी ताकत और कामत अता की मेरी बीवी को माफ कर दे। वो तुम्हारी मालिक है, तुम उसके गुलाम हो, क्या गुलाम अपने मालिक को निकल जाएगा? वो बेहोश पड़ी है, जरा अपने मालिक की तलवी मलो।
1: तुम कौन हो?
2: क्या मेरी आहो पुकार से तुम्हें पता नहीं चल रहा देव जी कि मैं इस औरत का खामी था? इसके तले मलो।
1: तुम हमें हुक्म नहीं दे सकते।
2: नहीं दे सकते? अरे जिसके तुम गुलाम हो वो हमारा हुक्म मान लेती है, तो तुम कैसे नहीं मानोगे जी?
1: जो चिराग रगड़ेगा हम सिर्फ उसका हुक्म मानेंगे। अलादीन, आधा मिनट और हुकुम दो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे।
2: अल्लाह बचा, अल्लाह बचा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी डार्लिंग, जरा होश में आओ ना, वरना देखो, वरना आधे मिनट बाद में रंडवा हो जाऊंगा। बोलो, अब बोल भी दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे हूँ नहीं, इस कमबख्त को कोई हुक्म दो।
3: कैसा हुक्म?
2: पा पा पा पा जी।

0: पानी का गिलास, और जब भी चिराग रगड़ोगे तुम्हारा गुलाब फिर हाजिर हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूं।
1: शुक्र है भगवान का। लक्ष्मी लक्ष्मी आगे खोलो लक्ष्मी, वो मनोज चला गया।
2: चला गया? क्या कह गया?
1: ये पानी का गिलास दे गया, इसे पियो और रो। मैं कहता हूँ अहमक औरत, अरे मांगना था तो जूस का गिलास मंगाती, सिर्फ पानी के गिलास पर तुम्हें दौड़ा गया।
2: कितना भयानक देव था वो।
1: लेकिन था बड़े काम का। अच्छा चलो तुम अंदर पलंग पर जाकर लेटो, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया है।
2: जी सुनो, मुझे फौरन कहीं से चांद के वरक लगे सेब का मुरब्बा ला दो, ताकि मेरा दिल कुछ ठिकाने आ जाए।

0: सेब का मुरब्बा? गलती हो गई, उसी देव से मंगा लेते, बल्कि सेब के मुरब्बे का पूरा मर्दमान मंगा लेते। अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, मैं चराग रगड़ कर फिर उसे बुलाता हूँ, इस मर्तबा मैं उसे हुक्म दूंगा।
1: ना ना ना, मत बुलाओ उसे, मुझे उससे खौफ आता है, मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी।
0: तो बेहोश हो जाओगी तो क्या हो गया, मुरब्बे का मर्तबान तो आ जाएगा।
1: ना ना ना ना ना, चुन्नू के दादी, भगवान के लिए मत रगड़ो चिरा, मत रगड़ो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
0: अब ये चराग मेरे हाथ में है, मैं अलादीन हूँ, रामधन मर गया, अलादीन जिंदा हो गया। दौलत, महल, मोटर, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं तुम्हारा गुलाम, जो हुक्म दो बजा लाऊंगा, क्या चाहिए बोलो।
2: लड़की घोड़ी सुनबान के तक।

0: चुन्नू के डैडी।
1: ओफो, इस औरत ने तो जीना हराम कर डाला। और ये लक्ष्मी, सुर्खियाँ भरनी है तो अपने मैके में जाकर भरो, इस घर में तेरी अचरी तरबत दिखाओ।
0: वाह, बेइज्जती इस घर में हुई, सियापा मैके जाकर करूँ?
1: माफ कीजिए देवी जी, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैं पूछता हूँ, वो कौन बेवकूफ होगा जो एक बेइज्जत के लिए इज्जती करेगा? बोलो।
0: उस बेवकूफ का नाम मुरारी सेठ है।
2: मुरारी सेठ,
0: आज जब तुम न जाने कहाँ की खाक छाने गए हुए थे, वो लाल पीला मुंह बना आधम का, सौ सलवाते मुझे और तुम्हें सुनाई।
2: कौन मुरारी सेठ?
1: अच्छा वो जिसकी टांगे हर वक्त 45 का जाविया बनाकर चलती हैं।
3: क्या कहता था?
0: तुमने उससे 100 रुपया उधार लिया था। कहता था कि 6 महीने हो गए, चुकाते क्यों नहीं? कहता था राम धन तो चपर कनाती है, बेहाया है, अरे मेरे टुकड़ों पर पलता है।
1: क्या क्या क्या, मुझे गालियां देता था? अरे मुझे? अरे मैं तो उसकी टांगों को कद्दू बनाकर सब्जी मार्केट में बेच दूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को?
0: मगर तुम मुझे 100 रुपए दे क्यों नहीं देते? सारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कर गया।
1: मैं अब उसे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, बल्कि चिराग वाले देव को बुलाकर हुक्म दूंगा कि मुरारी सेठ को उठाकर हिंद सागर में फेंकाए। बड़ा मजा आएगा।
0: जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी करो। 3 दिन से चिराग तुम्हारे पास है, मगर देव को बुलाते तो हो नहीं। अरे कम से कम मुझे 1 रेशमी साड़ी तो मंगा दो।
1: तुम देखती जाओ, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान है। मैं ये मोहल्ला छोड़ दूंगा जहाँ के कुत्ते तक थर्ड रेट हैं और जहाँ मुरारी सेठ ऐसे चपड़कनाती रहते हैं। हम तो राजा गोरखनाथ की कोठी के बिल्कुल सामने एक अजीम शान बंगला बनवाएंगे
0: और मैं वहाँ की रानी बन के राज करूंगी। सारा काम नौकर चाकर करेंगे, है ना? ए सुन, मुझसे चारपाई के अजवान नहीं कसे जाते।
1: तुम्हारे बारे में भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तुम मैट्रिक में फेल हो गई थी ना?
0: लेकिन मैं उस बंगले में जाकर बीए का इम्तिहान पास करूंगी, देखना।
1: अरे उस बंगले पर तो राजा गोरखनाथ की एमए पास लड़की रहेगी।
0: क्या मतलब? क्या मतलब?
1: मतलब साफ है। नंबर एक, वो लड़की तुमसे 1001 गुना ज्यादा हसीन है। नंबर दो, उसने एक बार मुझे शट अप कहा था। नंबर तीन, वो अब शहर के रईस आजम सेठ अलादीन से शादी की दरख्वास्त करेगी।
0: और नंबर चार, कि तुम उसकी दरख्वास्त को पुर्जे उड़ाकर हिंद महासागर में फेंक दोगे। मगर कब? आखिर कब?
1: बस जल्दी, बात ये है, जरा कॉन्फिडेंशियल है, कानी भर कर इधर आओ। मुझे चराग रगड़ने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही। तुम वक्त शहर के लोगों ने एक इंच जगह भी वीरान नहीं छोड़ी। बिल्डिंगें बना दी, कारखाने बना दिए, दम पर सड़कें तालाब बना दिए। देव को बुलाऊं तो कहां बुलाऊं? क्योंकि जब वो आता है शराफत से थोड़े ही आता है, जलजला सा ले आता है।
0: अरे तो अपने ही आंगन में बुला लो।
1: पहले दिन जब वो आया था तो मोहल्ले के कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारे मकान की कोई दीवार गिरी है?
0: फिर?
1: अरे फिर क्या, जंगल में जाना पड़ेगा।
0: अकेले जाओगे? मुझे नहीं ले जाओगे?
1: तुम्हें सोचूंगा। बात यह है कि तुम्हारे बारे में कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा।
4: अबे ओ राम भर के बच्चे, निकल आ बाहर।

0: फिर वही निराली से ठा गया।
1: चूहा खुद बिल्ली के पंजे में आ गया, देखूंगा देख लूंगा।
2: अबे क्या है, तभी से बात कर, जानता है मैं कौन हूँ?
3: वहां रे ठटपूंजिए, अरे मैं तुझे क्या, तेरे परदादा तो को जानता हूँ, जो कानों की मैल निकालने का पेशा करता था। निकालो निकालो मेरे 100 रुपए।
1: मुरारी सेठ, 100 रुपए लेने से पहले ये बताओ कि तुम अपनी स्मॉल स्केल बाइसिकल फैक्ट्री कितने में बेचोगे?
3: 2 लाख। 2 लाख रुपए में खरीदोगे?
1: बस, मैं समझता था ताजमहल जितनी कीमत मांगोगे। बोलो ताजमहल खरीदोगे?
3: अबे ओ शाहजहां के वारिस, तुम्हारे मुमताज महल मेरे घर के झूठे बर्तन मांजा करेगी, समझ गए?
1: और अगर तुम्हारी बेटी मेरे बूट पॉलिश करने लगे तो?
3: रामधन ढंग पी जाएगा।
1: जी
3: जी के बच्चे, रुपए निकाल, रुपए निकालो,
1: सूद लगाकर बिल मेरे बंगले पर भेज देना।
3: बिल नहीं, सिपाही भेजूंगा हथकड़ी के साथ।
1: अबे जा रहा हूँ,
3: लेकिन याद रखना, इस मोहल्ले से अब तुम बोरिया बिस्तरा गोल नहीं करोगे, समझ गए?
1: हाँ, समझ गया समझ गया, मेरा और तुम्हारा दोनों का बिस्तरा गोल।
2: भगवड़ा कहीं का।
1: भगा दिया कि नहीं? मैंने कहा लक्ष्मी
0: तुमने अच्छा नहीं किया।
1: अच्छा जी, अच्छे काम का ठेका सिर्फ मैंने ही तो नहीं ले रखा, कुछ अच्छे काम तुम भी कर लिया करो।
0: अरे उसने आले वक्त में आपकी मदद की थी।
1: बड़ी हिमायती बन रही है उस मुरारी के बच्चे की।
2: ये है आजकल की कलजुगी औरतें, जो अपने खामिन को छोड़कर
0: शहरों से।
2: इतना मुझे मत बोलो कि तुम्हारे मैके तक आवाज जाए। मैं जानता हूँ तुम उस मुरारी की हिमायत क्यों कर रही हो।
0: चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जर खरीद लौंडी नहीं।
2: मेरी ना सही, किसी और की जर खरीद लौंडी सही।
0: हाय हाय, इससे तो अच्छा था कि मैंने जिस दिन इस घर की चौखट पर कदम रखा था उसी दिन विधवा हो
2: जाती। मैं अभी तेरा और मुरारी के बच्चे का इलाज करता हूँ। अभी चराग रगड़ कर देव को बुलाता हूँ और उसे हुक्म देता हूँ कि लक्ष्मी और मुरारी दोनों को इकट्ठे बांध कर अंधे कुएं में फेंक दो।
1: अंधा कुआं किसा पाक।

0: ये रहा मेरा प्यारा चरा, अभी रगड़ता हूँ काला देव, जमीन फटेगी सांगन की। बलच बड़ा से सारा मोहल्ला हिल जाए, भूचाल आ जाए। आजा आजा काला देव, आजा आजा आजा, फट ए जमीन ए पाट। क्यों क्या हुआ?
1: एक चूहे ने बर्तन गिरा दिया।
0: चूहा? मगर चराग रगड़ते चूहा क्यों आ गया? देव क्यों नहीं आया?
1: अरे मैं क्या जानू, पहली बार तो देव आ गया था।
0: शायद एक बार देव आता होगा, दूसरी बार चूहा आता होगा।
1: इंसान की नीयत खराब हो तो चूहा ही आएगा।
0: लक्ष्मी लक्ष्मी डार्ली, जरा तुम रगड़ कर देखो ना।
1: और अगर देव आ गया तो मेरा हुक्म मानेगा, तुम्हारा नहीं। क्या मैं उसे ये हुक्म दे दूं कि मेरे खाने को बांध कर अंधे पियों ने फेंक दो?
0: नहीं लक्ष्मी, नहीं तुम मत रगड़ो, ला ला ला, और मुझे माफ कर दो डार्लिंग।
1: डार्लिंग नहीं, डायन कहो, डायन। अब बुलाओ अपने देव।
0: हाँ, अभी बुलाता हूँ, फिर रगड़ता हूँ, अभी बुलाता हूँ।
1: कोई आया? अब के तो चूहा भी नहीं आया।
0: बोगस चराग है।
1: अरे मैं तो पहले ही कहती हूँ, तुम हमेशा बोगस चीजें ही लाते हो। बोगस आदमी और ला भी क्या सकता है?
0: अब क्या होगा? मैं तो नौकरी से भी इस्तीफा दे आया हूँ, हम दोनों तो भूखे मर जाएंगे।
1: अरे तुम अकेले मरोगे, मैं तो मैके चली जाऊंगी, मगर तुम्हारा तो मैका भी नहीं है।
0: ना जा, मुझे छोड़ कर मत जाओ लक्ष्मी, भगवान के लिए प्यारी लक्ष्मी।
1: नहीं लक्ष्मी,
0: पति प्रथा स्त्री
1: नहीं, बेहया और
0: नेक और वफादार। फिर शायद बुरारी सेठ आ गया। मत खोलो मत खोलो।
1: अरे आने दो उसे, उसके साथ तो दूर रहूंगा, है ना? अरे वो तुम्हारी बीबी की इज्जत का डाकू है ना?

0: देखो तुमने से तुमने से रामधन कौन?
1: नहीं जी, मेरा नाम तो रामधन नहीं है, मेरा नाम तो अलाधीन है। अलाधीन?
0: डरो मत जी, सच सच बताओ, बाहर दरवाजे पर तुम्हारे नाम की तख्ती लगी है, रामधन
1: जी? जी वो तख्ती पड़ोस वाले घर की है, गलती से हमारे घर लग गई।
0: झूठ मत बोलो। अच्छा इधर लाओ अपना बाजू।
1: बाजू जी वो
0: इधर लाओ
1: जी।
0: देखो इस बाजू पर तुम्हारा नाम साफ लिखा है, रामधन।
1: ये तो मेरे बाप का नाम है।
0: डर गए हो क्या? लेकिन देखो रामधन, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने राजा साहब की बेटी को एक खत लिखा था?
1: मुर्गे जी, मैं वो खत नहीं जी, नहीं तो
0: बोलो, लिखा था कि नहीं?
1: जी लिखा था, लिखा था।
0: तो चलो मेरे साथ। मैं देखो रामधन, तुम्हें राजा साहब की बेटी ने याद फरमाया है।
1: याद फरमाया है मतलब, मगर कप्तान पुलिस जी, उनसे कह दीजिए जिस रामधन ने वो खत लिखा था वो मर गया।
0: मगर रामधन, मौत का एक दिन मुय्यन है और वो दिन अभी नहीं आया।
1: बस आया ही समझिए कप्तान साहब।
0: तुम चलते हो या हथकड़ी लगा कर ले जाओ?
1: लक्ष्मी मुझे बचा ले।
2: अरे मगर तुमने खत में लिखा क्या था?
0: कोई लव लेटर होगा।
1: जी नहीं, जी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी से ही लव करता हूँ और किसी से नहीं।
0: सिपाही हो, जकड़ लो इसे, लगाओ हथकड़ी।
1: मैं चलता हूँ जी, मैं चलता हूँ जी, शराफत से ही चलता हूँ। लक्ष्मी डार्लिंग, लक्ष्मी अलविदा, बाल बच्चों को सलाम कहना, मैके में तार भेज देना, मेरी वापसी की उम्मीद मत रखना। चलिए कप्तान साहब।

0: और तुम्हारा नाम है राम धन। तुम्हारा हैंडराइटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें तुम्हारा लव लेटर बेहद पसंद आया।
1: माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, और मेरे बेवकूफी थी, भला मैं और आपसे शादी की गुस्ताखी करता।
0: गुस्ताखी? गुस्ताखी कैसी? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम्हारे जैसा सोसाइटी का मालदार तनी शख्स मेरा जीवन साथी बनेगा।
1: जी, मैं तो बहुत तलाश इंसान।
0: नहीं, तुम कुदरी में छुपे हुए लाल हो। तुम नहीं जानते कि कितने जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जो ही तुम्हारा मोहब्बत नामा मिला, मेरे दिल में जैसे हजारों बनफ्शी फूल एकदम खिल उठे, जिससे मेरा सारा वजूद मुअत्तर हो गया।
1: ये आप क्या फरमा रही हैं राजकुमार जी?
0: तुम मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर हो, तुम मेरे गुलिस्तां की शमीली जाफिजा हो, तुम मेरे चंगे में नाचने वाले मोर हो।
1: राजकुमारी जी, क्या आप शायर हैं?
0: दर्थन, जिसे तुम्हारे तखयल की परवाज नसीब हो जाए वो शायर बन जाता है। बोलो, मेरी शादी की तारीख कब मुकर्रर की जाए?
1: मगर मुझे शक है कि आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं।
0: और मुझे शक है कि तुम मेरे करीब आकर भी दूर जा रही हो। वो हीरो का भरा हुआ थाल कहाँ है?
1: कौन सा थाल?
0: जिसका जिक्र तुमने अपने लव लेटर में किया था और कहा था कि वो आपकी तरफ से पहला तोहफा होगा। और फिर तुम सोने की रथ की डोली में बिठाकर मुझे पेरिस और लंदन ले जाओगे। मेरे लिए एक ऐसा महल दामिन करवाओगे जहाँ चिड़िया सोने के प्यालों में पानी पिया करेगी और जहाँ सैकड़ों नौकर जाकर मेरी खिदमत के लिए मौजूद होगी। पांव धुलाने के लिए अलग, हाथ धुलाने के लिए अलग, पलट बिछाने के लिए अलग, जगाने के लिए अलग, हटाने के लिए अलग। क्या हुआ जाने मन मिस्टर थन?
1: वो खत किसी और रामधन ने भेजा होगा।
0: क्या तुम उस रामधन को जानते हो?
1: जी हाँ, मैंने उसका गला घोट कर मार दिया।
0: मार दिया? मेरे रामधन को मार दिया? यानी तुम कातिल हो?
1: जी, उसने मुझसे खुद कहा था कि मेरा गला घोट दो।

सिपाहियों पकड़ लो इस कातिल खूनी लुटेरे को और ले जाओ उसे बंदी खाने में।

0: अलादीन का हुक्म है कि मैं तुम्हें राजकुमारी के कैद से छुड़ा लाऊं। सिपाहियों, खबरदार जो इसे हाथ लगाया।
1: हड्डियां चबा जाऊंगा।
0: चलो चलो रामधन, मेरी संगुली पर बैठ जाओ। आओ।

0: काले कालाधी अपना ये रामधन
1: ले आए मेरे गुलाम दे शाबाश।
0: कोई हुकुम?
1: अब तुम जाओ।
2: डार्लिंग लक्ष्मी,
1: कहो
2: उनका वो देव को तुमने भेजा था?
1: हाँ, अरे मुझे तुम पर रहम आ गया था कि रात तुम्हारी कसम में कत्ल ना कर दे।
2: मगर वो चिराग तो बोगस था, फिर देव कैसे आ गया?
1: अरे वो चिराग तो वाकई बोगस था, लेकिन असली चिराग तुम मेरे पास था, मैंने बदल लिया था, नकली चिराग तुम्हारे हमारे में रख दिया था।
2: इसका मतलब है तुमने मुझसे गद्दारी की थी।
1: क्या करती, तुम भी तो मुझसे गद्दारी करके राजकुमारी से शादी करना चाहते थे।
2: वो तो मेरी जहालत थी।
1: और ये मेरी शराफत है कि मैंने तुम्हें कत्ल होने से बचा लिया। अब बोलो करोगे राजकुमारी से क्या?
2: मेरी तौबा, सौ जन्म में भी नहीं।
1: नहीं, कम से कम इस जन्म में मत करना, वरना मैं विधवा हो जाऊंगी।
2: इतने जोर से मत सो, मुझे डर लगता है लक्ष्मी, मत सो।

0: लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी डार्लिंग तुम कहाँ हो?
1: अरे यहाँ बैठी आलू छील रही हूँ, क्या हुआ?
2: अरे तुम्हारे माथे पर तो पसीना आ रहा है।
0: पानी पिलाओ, पानी जल्दी। मेरे सुनो लक्ष्मी।
2: हाँ
0: जरा इधर अपना हाथ मेरे हाथ में तो दो।
2: अरे बात क्या है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, अब अपने इस हाथ को मेरे हाथ में ही रहने देना, छुड़ाना मत। देखो दो, नहीं छुड़ाऊंगा मैं लक्ष्मी।
2: पहले मैं कब छुड़ा रही हूँ, लेकिन बात क्या है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं कल कबाड़ी बाजार से एक चढ़ा आया था ना, वो कहाँ है?
2: अरे वो सामने ताक पर रखा तो है।
0: उठाकर उसे गली के बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। ये मनुष्य चढ़ा गया
2: है। मनुष्य? कैसे?
0: तुमने समझोगे, तुमने समझोगे। लाओ मैं उसे फेंक देता हूँ।
2: मैं फेंक देता हूँ।

मोहम्मद रफी आशा भोसले मन्ना डे और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म थी ताजमहल, मौसीकार थे रोशन। और समझ लीजिए, अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म है तीन देवियां, नगमा निगार मजरू, मौसीकार एस डी बर्मन।

ख्वाब तो ऐसे न थे। इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकार थे उषा खन्ना। और समझ लीजिए, सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमलता जसपाल सिंह की आवाजों में, नदिया के पार फिल्म का नगमा। मौसीकार है रविंद्र सिंह।

0: उम्मीदवार एमी एक्टन से होगा। रामास्वामी ने 2024 में मुख्तसर अरसे के लिए ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बाद में उनकी हिमायत का ऐलान किया और फिर एलन मस्क के साथ हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक एक मुख्तसर मुद्दती ओहदे पर भी काम किया। अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो अमरीका की तारीख में तीसरे भारत नजाद अमरीकी गवर्नर बन सकते हैं। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के बॉबी जिंडल लुजियाना के गवर्नर और निक्की हेली जनूबी कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले उस एक तरफा जंगबंदी से चंद घंटे कबल हुए जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना थी। यूक्रेन के वजीर खारजा ने इल्जाम लगाया है कि रूस जंगबंदी की तैयारी के बजाय अपने हमले तेज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 7.2 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के ईंधन की यकीनी फराहमी और रिजिलियंस पैकेज का ऐलान किया है ताकि वह ईंधन के कौमी जखायर को मुस्तकम कर सके और आइंदा बजट तजावीज में हुकूमत के जेर मिल्कियत मुस्तकिल ईंधन जखायर तैयार कर सके। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी इलाके, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के बाज मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत की, कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। तमिलनाडु में सियासी पार्टियों के दरमियान सरगर्म बातचीत जारी है। अक्सरियत की कमी के बावजूद TV के हुकूमत तश्कील देने के लिए दावा पेश करने वाली है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव की गदारी के 70 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: FM बैंड 103.6 MHz से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ड सर्विस तिंदी ए पंजाबी सेवाई। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सवा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम झोक माही दी।

साईं झूलेलाल दी इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। मतों नहीं कोई सिराय की बिरादरी विच इंझा बंदा हो सी जिन ना सुन रखे हो सी। बहु वड्डे वड्डे गायका ने एक गीत गाया है। अज असाकू रूपेश चोपड़ा जी एक गीत गा के सुने सन दमादम मस्त कलंदर।

अली दा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाले मेरी पत्ते रखियो बला झूले ला।

सखी शाबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर।

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, हुल हुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, हुल हुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, था था नाच नचाई है। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी।

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी

मंगाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई

0: वाह जी वाह वाह वाह वाह, रुपेश चोपड़ा जी बहु वधिया, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, बहु वधिया सूफी संगीत तुसा सा को सुनवाए।
1: दोस्तों तुसी सुन रहे सी सराइकी प्रोग्राम झोक माही दी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रोग्राम तुहानू बहुत पसंद आया होगा। हुण वेला हो गया प्रोग्राम देश पंजाब दा, आओ मिलके सुनदे हां।

दोस्तो आज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच असी गलबात करांगे स्वतंत्रता सेनानी मोती लाल नेहरू बारे। जी आयां नूं प्रोग्राम दे विच कश्मीर बबरी एक कवि जिहड़े साडे प्रोग्राम च शिरकत करनगे उन्हां नाल कीती गलबात तुहानूं सुनाई जाएगी। इस दे नाल नाल पंजाबी फिल्म म्यूजिक भी तुसी सुनोगे ते नाल नाल सुनावांगे प्रोग्राम तमन्ना जिहदे विच साडे साथियां ने अपनी तमन्ना सानू लिख के भेजी होगी ते उस प्रोग्राम नूं असी पेश करांगे अपने दोस्तां लई। नमस्कार दोस्तो, मैं हां थोड़ी दोस्त मोनिका मेहता। अज दी गल हमेशा एक ऐसा विशा लैके आने जिहदे नाल सानू एक जीवन सेध भी मिलदी है। किसी ऐसी शख्सियत बारे असी गल करदे हां या ऐसे विषय बारे गल करदे हां जिहदे बारे च जानना अज दे समें दे विच बड़ा जरूरी हुंदा है। दोस्तो जदों असी देश दी सेवा दी गल करदे हां उदों ना एवें छोटा जिहा एक माइक्रो कंसैप्ट मन दे विच आंदा है कि पुराने वेलियां दे विच लोकी अपने बच्चियां नूं जरूर देश भगती लई प्रेरित करदे सी। बहुत ज्यादा घर च देश दी गल चलदी सी, देश दी तरक्की दी गल चलदी सी, देश दे रिसोर्सिस दी गल चलदी सी, पढ़िया लिखिया वांग गल कीती जांदी सी, अखबारां पढ़ के देश च की हो रहा है की होना चाहिदा उहदे बारे च विचार विमर्श कीता जांदा सी। शायद इस करके उदों सांझे परिवार हुंदे सन। जिहड़ा बंदा सांझे परिवार च रहना सिख जांदा है उहनूं पता हुंदा है कि देश कम किवें करदा है। जदों सारे मिलजुल के कम करदे ने उदों ही हर कम निपरे चढ़दा है, उदों ही घर दे विच खुशहाली खुशियां आंदियां ने ते तरक्की साडे हथ लगदी है। दोस्तो आज भी असी एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी शख्सियत नाल तुहानू रूबरू करवान जा रहे हैं जिन्हां दा अज जन्मदिन है ते जिन्हां दी जिंदगी दे फलसफे दे उत्ते अज दे प्रोग्राम च असी रोशनी पावांगे। मोती लाल नेहरू 6 मई 1861 ईस्वी नूं इन्हां दा जन्म होया सी। इलाहाबाद दे एक बड़े मशहूर वकील ते पंडित जवाहर लाल नेहरू जिहड़े भारत दे पहले प्रधानमंत्री सन उन्हां दे पिता। दोस्तो इन्हां ने भारत दी आजादी दी लड़ाई दे विच अपने आप नूं एक कर्मचारी दे तौर ते पेश कीता। उन्हां कहा कि मैं अपने देश लई जो कर सकदा हां मैं जरूर करांगा। दोस्तो जदों देश दी गल चलदी है ना इदां लगदा है कि किसी ने साडी मां नूं कैद करके रख्या होया ते असी अपनी मां नूं आजाद करवाना है। असी किन्नी ही वारी इह गल्लां कीतियां ने कि जिहड़े देश भगत सन उन्हां दी सोच बड़ी वक्खरी सी। उह मैं नहीं सन कहंदे, उह कहंदे सी असी, उह कहंदे सी असी मिलजुल के सब कुछ कर सकदे हां। तुसी उह कहानी तां सुणी होणी ना, एक लक्कड़हारा किसान जिहड़ा कि लकड़ां कट्ठियां करदा है, बड़ा मुश्किल हुंदा है घर दा टब्बर दा ढिड पालना, थोड़ी बहुती खेती भी करदा है ते उह देखदा है कि उह जिन्नियां लकड़ां लैके आंदा है रोज कुछ विक जांदियां, कुछ बालन वास्ते घर च इस्तेमाल कीतियां जांदियां, खेतीबाड़ी बड़ी थोड़ी जी हैगी है ते उहदे चार पुत्तर जिहड़े आपस च लड़दे ही रहिंदे ने। उह कहिंदे मैं तां औखा सौखा टाइम कढ लिया, हुण इह किद्दां कढणगे। ते फिर ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲੱਕੜ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲੱਕੜ ਝੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मोती लाल नेहरू जिन्हां दा एक ऐसे परिवार च जन्म होया जिहड़ा देश भगती दे रंग विच रंगिया होया सी। इन्हां दे पिता दा नाम गंगाधर सी। उह पछमी ढंग दी सिक्ख्या पाउण वाले पहली पीढ़ियां दे गिणे चुणे भारतीयां विचों सन। इलाहाबाद दे मीर सेंट्रल कॉलेज दे विचों पढ़े पर बीए दी अंतिम प्रीख्या ना दे पाए। फिर उन्हां ने कैम्ब्रिज 1883 ईस्वी दे विच पढ़ाई पूरी कीती ते उन्हां नूं अदालतां विच वकील दे रूप दे विच कार्ज करन दी एक सुविधा मिल गई। दोस्तो उन्हां ने अपनी वकालत सिर्फ अपने देश लई छड्ड दित्ती। जदों उन्हां ने वेख्या कि अंग्रेज हकूमत किवें भारतीयां दे उत्ते जुल्म कर रही है, एडा मोटा मोटा टैक्स लैंदी पई है, हर चीज दे उत्ते कर लगांदी पई है, भारत दी जिन्नू सोने दी चिड़िया कहा जांदा है उहदे जिन्नी भी संपत्ति है सोना चांदी हीरे जवाहरात लुट लुट के बाहर लैके जांदे पए ने। इह तां उह गल होगी ना कि चिराग थले अंधेरा। जदों अपने देश दे विच इन्ने संसाधन ने ते कोई गैर आके साडे संपत्ति दे उत्ते साडी इज्जत मान दे उत्ते अख रखे किवें। उह उदों

दोस्तों एक गाना सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई किसी लिए बड़ा रज के बदुआवां दे रहा है। गाना बड़ा वधिया है और देखो साडे संगीत दा किन्ना सोहना रंग है कि इहदे विच दुख सुख प्यार मुहब्बत हसी खुशी सब कुछ मिल जाती है। लो फिर गल्लां करदे करदे पहुंच गए अगले सैगमेंट दे विच जिहदा नाम है तमन्ना। और तमन्ना दे विच असी अपने दोस्तां दी फरमाइश पूरी करदे हां, उहनां दी तमन्ना पूरी करदे हां। ते अज जिन्हां दी तमन्ना असी पूरी करन लगे हां उह ने बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप ते इन्हां दे बहुत सारे दोस्त डबवाली तो ये सुनना चाहते ने सरदूल सिकंदर होरां दी आवाज दे विच नी मैं नी जाना खेड़ियां दे।

0: 랑가이야.
1: 아주 아주 아주 싱가라 생기지 아주 멋지 않아요 아주.
0: 자헨지 롤리아람지 자헨드
1: 자헨지 자헨지 싱가라 생기지 멋지 않아요 기
0: 할짤
1: 때다.
0: 할짤
1: तगड़ा
0: जी तो हां सुनाओ ठीक ठाक हो
1: तगड़ा हाल चाल देखो जिदा अंग्रेजी दे विच कहंदे है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन.
0: अच्छा जी
1: पहला प्रभाव आखरी प्रभाव.
0: सही गल
1: गल सुन बड़ी छोटी है पर गल की सच्चाई बंदा कोई भी झुठला नहीं सकता.
0: सही गल है
1: क्योंकि आम तौर पर आप जो किसी भी बंदे मिलते हैं जो आप कह नवे बंदे मिलते
0: हाँ
1: नवे रिश्ते की शुरुआत करते हाँ पहला प्रभाव ही जरा बाकी रिश्ते जिदा कहने परिपक्वता सिरजता है
0: जड़ है जी वह पहला प्रभाव जरा

करके ही कोई गल नहीं हुई, ना धरना ना हड़ताल ना चक्का जाम होया, क्योंकि सरकार दा सहयोग ही इन्ना सी कि किसी चीज की जरूरत नहीं पई। इन्होंने लफ्जा के मैं तो सारे तो बहुत बहुत खिमा दा जा चुका।

0: पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउन ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तोलाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: कार्यक्रम हाजिर हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति
1: और मैं हूं लोकेंद्र।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर।
0: जी
1: देखिए प्रीति बहन, इस योजना ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है देश में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। और क्या है ये योजना, हम अपने भाइयों को भी बता दें प्रीति बहन। यह योजना फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधि पौधे और बागवानी फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
0: और इसका अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भाई इसके मुख्य उद्देश्य है कि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़े, आधुनिक तकनीक और उन्नति

0: उन्नत खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन सबसे क्या होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा ध्येय है हमारी सरकार का, और जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है।
1: बिल्कुल प्रीतिबेन, और इसके साथ साथ देखिए योजना के प्रमुख घटक भी हैं, हम वो भी बता देते हैं। NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों के लिए है, और नेशनल बंबू मिशन, इसमें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये स्कीम है और इसके लाभ भी हैं, आप बता दीजिए।
0: लाभ अगर हम बात करें तो किसानों को सब्सिडी यानी कि अनुदान मिलता है।
1: हाँ हाँ।
0: और पौधा रोपण, सिंचाई, ग्रीन हाउस, शेड, नेट आदि की सहायता मिलती है, और जैसे भंडारण है, प्रोसेसिंग है, इसके लिए आर्थिक मदद भी सरकार देती है, और नई तकनीक को सीखने के लिए जो शिक्षण है उसके लिए भी एक तरह से वो भी हमारे लिए लाभ ही है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले शिक्षण ले लें और उसके बाद अपनी जानकारी में इजाफा करके फिर उसको अपनी खेतीबाड़ी, किसानी या बागवानी में उसको उसका जिम्मेदार उसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल प्रीतिबेन, और इसका देखिए किसको लाभ मिलता है, कैसे मिलेगा, हम वो भी बता देते हैं। देखिए किसानों को इसमें लाभ मिलेगा और उसके किसान समूह जो एक समूह बना लेते हैं, हाँ, उसके अनुसार भी मिलेगा, और स्वयं सहायता समूह भी बना के मिल सकता है और उद्यमियों को भी मिल सकता है। तो ये तो रही योजना। अब देखिए शाम का समय है, हमारे भाई किसान भाई बहन फ्री होकर इंतजार करते हैं हमारे कार्यक्रम का, तो क्योंकि इस कार्यक्रम में हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं उपदेश। तो सबसे पहले आप किसको सुनवा रही हो?
0: हम सुनवा रहे हैं रुस्तम सागर को, उनसे सुनते हैं ये उपदेश। नहीं, ये उपदेश नहीं है, हम सुनवा रहे हैं उनको भजन, क्योंकि शाम का समय है, संध्या भजन से शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: प्रीति बहन
1: जी,
0: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये भजन, कलाकार थे रुस्तम सागर।
1: और आइए अब आपको जानकारी दिलवाते हैं समर वेजिटेबल फील्ड डे, ये जो खास दिन है उस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, जो कि डायरेक्टर हैं एवं कुलपति हैं IARI पूसा नई दिल्ली में। आइए जानते हैं ये जानकारी।
2: सबको नमस्कार, किसान भाई बहनों और हमारा साथी इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स विद्यार्थी है, आज हमारा ये मीटिंग से एटलीस्ट दो किसान भाई बहनों को प्रेरित किया ये सब्जियों को ये बनाने के लिए, और FPO को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। एंड हमारा तो भारत का तो खाना बहुत नेचुरल है, एंड हमारा फूड सिस्टम अलग है, सभी देश अलग है, भारत अलग है। लेकिन जब भारत का भोजन अलग है तो सब्जी का फ्रूट्स का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत 100 ईयर्स होगा 2047 में, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो सब्जियों का, फ्रूट्स का एंड फूल का जो ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चावल का डिमांड है अभी से 2026 में, सो अगले 20 साल में हमारा चावल रिक्वायरमेंट है ज्यादा नहीं है, 80 मिलियन टन ज्यादा।

फूल को बढ़ाने में ये न्यूट्रिशन का नेशनल एजेंडा है, ये पूरा करना चाहिए। बाद में जब हम लोग का 1000 मिलियन टन रिक्वायरमेंट है तो क्या करना चाहिए? अकेले फॉर एग्जांपल पूसा संस्थान पूरा भारत में अलग अलग सब्जी है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग खाना पीना तरीका है, अलग अलग भौगोलिक टेम्परेचर है। हम केवल दिल्ली में इधर बैठ के पूरा देश का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहिए। जो बीज हमारा आज बहुत अच्छा डिस्प्ले किया आपने, टमाटो, चेरी टमाटो, करेला एंड अलग अलग मस्क मिलन है, अलग अलग फ्रूट्स है, समर कैलीफ्लावर, सभी आप बहुत अच्छा से डिस्प्ले किया, लेकिन लोगों को पास पहुंचना है तो क्या प्लेटफॉर्म है हम लोग बनाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हमारा पुणे हमारा रीजनल सेंटर है, हम टारगेट पुणे में सीडी प्रोडक्शन का टारगेट करने से महाराष्ट्र से और तेलंगाना को टारगेट कर सकता है। अगर हमारा वेलिंगटन है ऊटी का पास में तो केरला तमिलनाडु को टारगेट कर सकता है। हमारा एक सेंटर बिहार में है, उधर ईस्टर्न पार्ट में कर सकता है। एक कलिम्पांग वेस्ट बंगाल पहाड़ में तो उस रीजन में कवर कर सकता है। तो हम लोग ये सोचने के लिए समय है, हम लोग किसान भाई बहन है ना, एक संगठित हो ही करना है, नहीं तो भारत में एक समस्या है, मार्केटिंग का चैलेंज है। आपको जो पैसा मिलना चाहिए 30-40% भी नहीं मिलेगा, बीच में मिडिल मैन खा जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। ऐसे भी फार्मर का समस्या बहुत है। दूसरा है कभी भी खाद खरीद करना, कोई इनपुट खरीद करना है तो वो ऐसा बताएगा आपको चाहिए ये कंपाउंड है ये भी खरीद करो बताएगा। इस तरफ का जो इनपुट खरीद करने में और बीज प्रोडक्शन करने में अकेले किसान मुश्किल होगा, संगठित होके एफपीओ रूप में करना चाहिए, मार्केटिंग भी अच्छा करना चाहिए। सबसे बेस्ट पाइनएप्पल असम में होता है, तो कहाँ तक असम में के बंगाल तक पहुंचता है, लेकिन गुजरात में नहीं जाता, मुंबई में इतना बड़ा मार्केटिंग नहीं जाता। जाने के लिए क्या करना चाहिए? आप है ना 50 लोग मिलके करने से मार्केटिंग ट्रक बुक कर सकता है, 10 सुपरमार्केट से आज पाइनएप्पल डिमांड इस 15 दिन में क्या होगा आप मार्केटिंग कर सकता है। बीज बहुत मुख्य है, मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग साइंटिस्ट हमारे तरफ से नहीं है, किसान का नजर में रख के करना है। प्राइम मिनिस्टर सिंचाई योजना, पहले वाटरशेड प्रोग्राम होते थे, उसके बाद सिंचाई योजना है। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन जी भारत रत्न अवार्डी हमारा पुराना निदेशक, किस खेत में एक फार्म पॉन्ड हो, किस खेत में एक बायोगैस प्लांट हो, एक खेत सुरक्षित है। लेकिन किस लिए बताया स्वामीनाथन साहब, ये बताया 40 साल पहले, लेकिन आज स्वामीनाथन साहब का जो मैसेज आज ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब भी यही है, पानी कहाँ जाएगा? अगर मेरा एक फार्म में एक कुआ बनाया, टिपिकल एरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतपुर में 40% मूंगफली बढ़ाया, एक लाइफ सेविंग इरिगेशन। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब किसान पूछ रहे खेत में हमारा 3 एकड़ जमीन है, हमारा 3 एकड़ में हम कुआ बनाने के लिए हम तैयार है, लेकिन जब बारिश नॉर्मल है तो हमारा 10% एरिया खराब हो रहा है, हमारा लैंड एरिया कम हो रहा है ना। इसका मतलब है किसान देख रहे हैं एक एक इंच के लिए देख रहे हैं। तो इसलिए हमारा अनुसंधान होगा, ये 10% फार्म पॉन्ड नहीं आना है, 5% में लेके आना। सो हम लोग सब्जियों में भी एक एक इंटेंसिव करेला प्रोडक्शन होगा, और थोड़ा ब्रीडिंग के साथ प्रॉपर एग्रोनॉमी होना चाहिए, ब्रीडिंग के साथ पानी का महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक एक बिंदु से ज्यादा हम लोग ये करना है। एंड मल्च कम मेन्यूरिंग का हमने जिक्र किया, हम लोग खाद डालने से खर्चा ज्यादा होगा। अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश कास्टली फर्टिलाइजर है, कहाँ से आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश? भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होता, इजराइल से, कनाडा से, रशिया से आता है। इतना से हम पेट्रोल डीजल खर्च करके इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन जो गिरा हुआ पत्ता इज नथिंग बट म्यूरेट ऑफ पोटाश। जो केला है 1000 किलो पोटाशियम लेता है, लेकिन केवल 1000 में 50 किलो इकोनॉमिक यील्ड में रहता है, 95% ये पत्ता में ये रेसिड्यू अवशेष में रहता है। अगर उसको मिट्टी में लेके आयो तो पूरा खर्चा सेव हो जाएगा। इस तरफ का थोड़ा सा संक्षिप्त में, ये एक सब्जेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर काफी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। कम जगह में कम पानी
मैनेज करके एक्सपोर्ट जो अभी हम लोग इतना हैप्पी हैं 60 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर 60 एक्सपोर्ट उसी पानी को उसी का फर्टिलाइजर को उसी भूमि को लेके उसी का वातावरण लेके सब्जी में मरने से हम लोगों को 100 बिलियन US डॉलर्स एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेस

0: जो एक्सपोर्ट्स है बैलेंस करना चाहिए। एक बार मिट्टी जाने के बाद मिलेगा नहीं पानी, तो कभी कभी बारिश आ सकता है, एक बार मिट्टी निकलने के बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। आज हम लोग काफी वेराइटीज कमर्शलाइज किया, करेला हमारा 160 हाइब्रिड्स वो डिस्प्ले किया, अलग अलग रीजन्स के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए काफी अच्छा डिस्प्ले किया, एंड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। एक हमारा किसान आया, बीज अवेलेबल नहीं है, बीज अवेलेबल केवल पूसा संस्थान से नहीं होगा ना, सब हम लोग पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन करना चाहिए। एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस रूप में जाना चाहिए, बिजनेस रूप में जाना चाहिए, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन चाहिए, सब्जियां इस तरफ हाई वैल्यू क्रॉप होना चाहिए, इसकी तरफ वैल्यूएशन प्रोसेसिंग लिंक करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, देन ओनली किसान खेती हमारा भारत में खड़ा रहेगा। हम लोग गर्व से बताएंगे भारत ये कृषि संपन्न देश है, रहेगा, हमेशा रहेगा।
1: प्रीति बहन
2: जी,
1: अभी जानकारी सुन रहे थे हमारे किसान भाई बहन समर वेजिटेबल फील्ड डे, इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, जो कि डायरेक्टर एवं कुलपति हैं IARI पूसा नई दिल्ली से, और इसमें सहयोग था विशाल और अंकित का।
2: तो आइए अब सुनवाते हैं सत्यदेव सागर से ये उपदेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे सत्यदेव सागर की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 हो चले हैं और ये समय होता है, हमारे श्रोता जानते हैं, गजल और कव्वाली के लिए समर्पित नगमों का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं जगजीत सिंह साहब की इस गजल के संग।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 20,000 से 23,000 रूपये से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 38,100 रूपये हो गया है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रूपये से बढ़ाकर 35,420 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय केवल शिक्षकों के लिए आर्थिक लाभ नहीं बल्कि शिक्षकों के समर्पण और कठिन परिश्रम का सम्मान है। अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के समान वेतन मिलेगा जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लू की कार्ययोजना पर लगातार काम चल रहा है। वहीं सरकार ने पूरे शहर के लिए लू की कार्ययोजना जारी की है जिसमें सरकार ने हर वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया है। इस योजना पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है और दिल्ली में भीषण गर्मी से निपटने के लिए 13 जिलों के लिए 13 वाहन तैनात किए गए हैं। इन वाहनों द्वारा वाटर कूलर, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, ओआरएस और टोपी और तौलिया जैसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें भीषण गर्मी के दौरान चौराहों पर खड़े लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में अधिकारियों और बच्चों को पानी की कमी से बचाव के लिए जलपान अंतराल सहित व्यवस्थाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं।
2: दिल्ली सरकार बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है श्रमिक भाई बहनों को लेकर के जो गर्मी के दौरान बाहर काम करते हैं उनके लिए हमने 1 से 4 रेस्ट भी दिशा निर्देशित किया है और बच्चों को भी स्कूल में हमने पूरी तरीके से डिहाइड्रेशन के लिए वाटर बेल से लेकर के उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्कूल अथॉरिटीज को बोला है। हॉस्पिटल्स में हीटवेव से रिलेटेड सारी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, एक्स्ट्रा बेडिंग की फैसिलिटी, इस सबका भी समाधान दिल्ली सरकार ने किया है।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने छात्रों से एआई और ज्ञान आधारित परिवर्तन के युग में गुरुवाणी के ज्ञान का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब किसी संस्थान का संकल्प राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है तो उसकी उपलब्धियां राष्ट्र की उपलब्धियां बन जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान सभी विद्यार्थियों के मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान उत्कृष्ट परंपरा के माध्यम से युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना भी विकसित कर रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित विश्वविद्यालय के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह आकर्षक विदेशी नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
3: सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशा निर्देश जारी किए। श्री प्रधान ने कहा कि ये समितियां विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विकेंद्रीकृत शासन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एसएमसी के गठन पर विशेष बल दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने में एसएमसी की अहम भूमिका है।
4: बच्चों की चौमुखी विकास के लिए उनकी पढ़ाई, उनकी स्वास्थ्य, उनकी व्यवस्था, उनकी मेंटल हेल्थ, CWSN, इस सारा विषयों के ऊपर सरकार की दायित्व है व्यवस्था बनाना। लेकिन व्यवस्था की आगे जो हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ा भूमिका है। आने वाले दिनों में देश में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की एक संस्कृति बनानी पड़ेगी, एक जन आंदोलन बनानी पड़ेगी।
1: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए दिशा निर्देशों से विद्यालय प्रबंधन समितियां एसएमसी महज निगरानी करने वाली संस्थाओं से ऊपर उठकर एक वास्तविक विद्यालय समुदाय संचालन संस्था बन जाएंगी। श्री सूद ने कहा कि एसएमसी अब बच्चों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी कल्याण, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर से जुड़े एरावत रिसर्च फाउंडेशन ERF के साथ एक समझौता करेगी। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की पर्यावरण नीतियों को भरोसेमंद डेटा और व्यवहारिक नतीजों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सुशासन के जरिए लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके और इस समझौते का उद्देश्य पर्यावरण विभाग और ERF के बीच एक सहयोगी ढांचा तैयार करना है। सरकार ने बताया है कि देशभर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
5: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: श्रीमती सुजाता ने बताया कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
6: जो घरेलू कुकिंग LPG सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक LPG सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज बकरवाला और नांगलोही में चल रहे अवैध LPG रिफिलिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने के लिए जमा किए गए 96 अवैध LPG सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने को मंजूरी दिए जाने की सराहना की है। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम न्याय प्रक्रिया को नई गति देगा, लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाएगा और गरीब तथा दूरदराज के याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज डॉक्टर RP नेत्र विज्ञान केंद्र में 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को AI से लैस स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके माध्यम से वो ध्वनि के जरिए अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे।
7: AI आधारित ये स्मार्ट चश्मे दृश्य जानकारी को बोली जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं, साथ ही ये वस्तुओं की पहचान करने, चेहरों को पहचानने, रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने और नेविगेशन में सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह उपकरण दृष्टि बाधित व्यक्तियों को उनके दैनिक कार्यों को बिना किसी बाधा के करने में मदद करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सामुदायिक नेत्र विज्ञान के प्रभारी डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि एम्स ने दिल्ली NCR के स्कूलों में पहले से चिन्हित कम दृष्टि वाले बच्चों को ऐसे लगभग 1700 AI सक्षम चश्मे वितरित करने की योजना बनाई है।
8: इस चश्मे में जो चीज दिखाई देनी चाहिए उसको सुनने में चेंज किया, जैसे चश्मा अगर किसी बच्चे ने लगाया हुआ है ये कनेक्ट होता है स्मार्टफोन से और ये अपने आप बता देते कि आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चीजें अवेलेबल। अगर बच्चे को कोई किताब पढ़नी है तो चश्मे की वजह से उसकी जो फोटोग्राफ आ जाती है और उसकी जो फोटो होने के बाद वो उसको सुन सकता है। किसी बच्चे को नोट की पहचान करनी है तो उसको नोट को चश्मे के सामने रख दे, चश्मा अपने आप बता देता है कि ये इतने रुपए का नोट।
7: आकाशवाणी समाचार से अपने अनुभव साझा करते हुए एक लाभार्थी ने एम्स की इस पहल की सराहना की और कहा कि ये स्मार्ट विजन चश्मे उनके जीवन में काफी मददगार साबित होंगे।
9: जब मेरे पास ये स्मार्ट ग्लास नहीं था तो टीचर्स आते थे जो कि बोर्ड पर लिख करके चले जाते थे, तो हमारे साथी जितने भी फ्रेंड्स थे नॉर्मल वो तो सब चीजें पढ़ लेते थे लेकिन हमें पता नहीं चलता था जब तक कि टीचर्स नहीं बताते थे। स्मार्ट विजन ग्लासेस से जो मुझे फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम 9th to 12th में वो मेरे आने वाले साथियों को फेस नहीं करनी पड़ेगी।
7: इससे पहले एम्स ऐसे 53 स्मार्ट विजन चश्मे वितरित कर चुका है जो लाभार्थियों को अपने दैनिक कार्य आसानी से करने में सहायता कर रहे हैं। आनंद कुमार के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का एक विशेष स्मृति अंक जारी किया। यह अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य में संचार अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस ने आज छात्र पुलिस कैडेट प्रोग्राम के अंतर्गत जहांगीरपुर स्थित के ब्लॉक के राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ई सुरक्षा पर 16वां सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 80 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और डिजिटल खतरों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब खेलों के वैश्विक मंच पर नई पहचान दर्ज कराने जा रही है। एक रिपोर्ट।
10: मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में टिकटिंग, स्वयंसेवकों की भागीदारी और विस्तृत खेलों की समय सारिणी से संबंधित जानकारियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि

0: प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजधानी के आधुनिक खेल सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि राजधानी को देश की प्रमुख स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। ये पहल 4 नए श्रम संहिताओं के माध्यम से किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित है, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक स्तंभों के अंतर्गत समेकित करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रूपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। राजधानी में आज दिन के समय हल्की धूप रही। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आसमान साफ रहेगा, साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत प्रदान करने के लिए 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को रवाना किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में ढकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हेलो, सलाम, नमस्ते। फिल्म संगीत से सजी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बातें और कुछ खास गीत। तो क्या कहते हैं, करें अपनी रोलर कोस्टर राइड को किक स्टार्ट विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

कभी सोचा है दोस्तों, एक सिंपल सी कॉफी भी किसी के साथ हो तो उसका टेस्ट थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और स्पेशल क्यों लगने लगता है? शायद वजह कॉफी नहीं, वो साथ होता है जो हर छोटी छोटी चीज को यादगार बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका और हमारा साथ। वैसे एक बात और है मेरे दिमाग में, कभी कभी ना मुस्कुराहट भी एक कहानी कह जाती है, कभी कभी मुस्कान भी दिल में एक हल्की सी कसक छोड़ जाती है, जब हंसी में भी थोड़ा सा मलाल छुपा हो और जब दिल कुछ कहे और लफ्ज साथ ना दें, तो शायद वही एहसास बन जाता है एक गीत। सुनवाती हूं आपको एक बहुत प्यारा सा गीत, जिसे सुनने से ज्यादा अगर आप महसूस करेंगे तो शायद जो मैंने कहा वो समझ सकेंगे।

जी हाँ, आपसे ही कह रहे हैं हम। जरा मुस्कुरा दीजिए। वैसे दोस्तों, प्यार में ना एक बहुत क्यूट सी प्रॉब्लम होती है। क्यूट, हाँ क्यूट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दिल है ये तो किसी पर आ जाता है, लेकिन दिमाग जो है ना ये अपना काम करता रहता है, हल्का हल्का टीज करता ही रहता है कि यार सच में इसके काबिल हूं भी, या बस ओवरथिंकिंग चल रही है। और फिर हर छोटी बात में हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं। उसकी एक स्माइल, एक रिप्लाई, एक नजर, सब कुछ सडनली स्पेशल लगने लगता है। और बस इसी स्वीट सी कंफ्यूजन और दिल के हल्के फुल्के सवालों को लेकर सुनवाने वाली हूं आपको ये अगला गाना। तो अगर आप भी कभी किसी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने लगे हो, उनकी एक हाई पर दिल ने थोड़ा सा ज्यादा धक धक कर दिया हो, और सीक्रेटली ये सोचा हो कि काश मैं इसके काबिल बन जाऊं, तो जनाब ये गाना सीधा आपके दिल से कनेक्ट करेगा। थोड़ा सा ब्लश कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और एंजॉय कीजिए।

और दोस्तों कभी नोटिस किया है, कुछ फीलिंग्स ना बिना नॉक किए दिल में एंट्री ले लेती हैं। ना कोई प्लान, ना कोई रीजन, बस एक नजर, एक मुस्कान और दिल क्वाइटली बोल उठा है कि ओहो कुछ तो हुआ है। और फिर हर एक छोटी सी बात में वही शख्स नजर आने लगता है। अच्छा, सॉन्ग्स भी ना थोड़े ज्यादा

महसूस किया कि कुछ तो हो गया है, मतलब दिल ने क्वाइटली किसी को नोटिस तो कर लिया है, बिना परमिशन, बिना वार्निंग, बिना पूछे। और अब हालात ये हैं कि हर छोटी सी बात में, हर छोटी बड़ी बात में वही याद आ रहा है। एक रैंडम सी बात भी होती है ना, तो दिल कह उठता है, अरे यार उससे बतानी है, उससे ये बात कहनी है। और पता है क्या, यहीं से कहानी हो जाती है थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग। जब कुछ हो गया है से सफर बढ़कर सब कुछ उसी तक पहुंचने लगता है, मतलब दिल की हर बात, हर फीलिंग, हर छोटी बड़ी कहानी एक ही एड्रेस पर डिलीवर होने लगती है। तो अगर कभी आपने ये स्टेज भी क्रॉस की है, या अगर आप अभी इसी स्टेज पे हैं, तो ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, ये बिल्कुल आपके दिल की बात है। सुनिएगा जरा।

जी हाँ, तुम तक। अभी आपने महसूस किया ना? और ये कुछ ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ फील ही कर सकते हैं। मतलब कहकर बता पाना, लफ्जों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना? हर दिल की बात, मतलब दिल की हर एक बात, हर एक एहसास जब एक ही शख्स तक पहुंचने लगे और जब ये फीलिंग थोड़ी और गहरी हो जाती है ना, तो दिल सिर्फ बताना ही नहीं चाहता है बल्कि उस एहसास में थोड़ा थोड़ा खो भी जाना चाहता है। और फिर वही मोहब्बत थोड़ी सी और नजाकत और थोड़ा और करीब आकर एक छोटी सी ख्वाहिश, एक खूबसूरत सी ख्वाहिश बन जाती है मीठी सी चाहत। तो भाई, अगर कभी आपने भी इस एहसास को दिल से महसूस किया है या आप कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, तो अब वक्त है उसी प्यार को थोड़ा सा और करीब से जीने का।

0: नहीं भाई, ये ना तो कॉमेडी है ना ये ट्रेजेडी है, ये तो है एक फीलिंग, एक एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एक शुरुआत, एक हल्की सी चाहत जो दिल में चुपके से बिना पूछे बिना परमिशन के अपनी जगह बना लेती है, और जब यही चाहत थोड़ी बढ़ती है ना तो दिल सिर्फ महसूस नहीं करता, थोड़ा थोड़ा बेचैन भी होने लगता है, और फिर वही मोहब्बत थोड़ी सी नजाकत छोड़कर थोड़ी सी शरारत थोड़ी सी बेकरारी में बदल जाती है, जहां दिल हर पल उसी के बारे में सोचता है और खुद ही खुद मुस्कुराते रहता है। तो अगर आप भी इस प्यारी सी बेचैनी को महसूस कर पा रहे हैं ना, तो अब वक्त है इस एहसास को थोड़ा और करीब से समझने का, सुनने का।
1: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। Who is he?

जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनको हम बता दें कि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका और मैं हूँ आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश।

फिलहाल तो मेरे हाल का कुछ ऐसा सवाल है कि कार्यक्रम बढ़ रहा है अपने अंतिम पड़ाव की ओर, लेकिन अभी भी गुंजाइश है एक प्यारी सी बात और एक प्यारे से गीत की। तो कभी कभी होता क्या है ना दोस्तों कि प्यार ना बहुत शोर से नहीं आता, वो बहुत हल्के से चुपके से दिल में उतरता है और फिर हर धड़कन को थोड़ा थोड़ा खास बना देता है। और जब ये एहसास अपने पीक पर होता है ना, तो ये जो दिल है ये बस हंसना चाहता है, जीना चाहता है और उसी एक फीलिंग में खो जाना चाहता है। तो बस आज के इस प्यारे से सफर को यहीं पर एक मीठी सी मुस्कान के साथ मैं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत। मैं ये गीत आपके लिए छोड़कर जा रही हूं और हम बने हुए हैं फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे सुनिधि चौहान की आवाज में। ये गीत मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपको जरूर सुनवाएंगे। और इस गीत के तुरंत बाद हम सुनेंगे समाचार। तो क्या कहते हैं, दीजिए अपनी दीप्ति को इजाजत कार्यक्रम गीत मालिका से और बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: इसी के साथ मैं दीप्ति पाठक निधीश आपसे गीत मालिका कार्यक्रम से इजाजत चाहूंगी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
4: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
5: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
4: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति

0: और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
1: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंड कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की।

0: इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमरीका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: Culture, connectivity aur capacity building ke saath saath security, sustainability aur supply chain resilience har kshetr mein hamara sahyog नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: The Prime Minister said to keep the shared heritage alive, India is restoring the Mai Son and Nhan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization.
2: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवित रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता

9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं विलायत हुसैन सागर। नौ बजकर 45 मिनट पर खबरें नचोंगी और 9:55 पर मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा हरफ सुखन और फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुनेंगे 10:30 से लेकर 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे विलायत हुसैन सागर की गई चंद गैर फिल्मी गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुए हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फुरकान खान। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीएस के सरबराह सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुज के रास्ते बिला रूकावट नकल व हमल की खातिर एक मुआहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, तिब्बी साजो सामान, पब्लिक सेक्टर ऑडिट, डिजिटल अदायगी निजाम और सकाफत और सियाहत के शोबों में मुख्तलिफ मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत के बाद इन मुआहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात के अलावा बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तो लाम का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम की कदीमी चंपा तहजीब के माई सन और नाताऊ मंदिरों का अहया कर रहा है। उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निपटने की खातिर भारतीय आवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तो लाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकतदारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नतीजे को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफैन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरतहाल के इजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहां जराई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तेफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफैन ने 2027 से वियतनाम की आवामी सेहत देखभाल की खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कानात से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाती राबतों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात, तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी रजामंदी जाहिर की।

0: कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 15 में से 14 तमगे हासिल किए, जबकि अंडर 15 लड़कियों की टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और 15 में से 13 तमगे जीते। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और अपनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकल व हमल की खातिर एक माहदे के करीब हैं और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से लेकर हाजिर है आपका मेजबान नईम आदावर्स। आज इस सेगमेंट में बात करते हैं उस फल की जो देखने में बड़ा खूबसूरत, दिलकश और जायके के एतबार से खट्टा मीठा। हम बात कर रहे हैं आलू बुखारे की। आलू बुखारा यानी प्लम, जिसमें फाइबर्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और पोटेशियम वाफिर मकदार में पाया जाता है और ये बहुत ही कम कैलोरी वाला फल है जो कब्ज दूर करने और निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करने के अलावा बहुत सारे तिब्बी फवायद रखता है। अब कहने के लिए तो जनाब ये फल है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सेहत के हवाले से बहुत सारे फायदे आपको हासिल होंगे जितने हमने बताया। उसके अलावा हड्डियों को ये मजबूत करता है और आपका जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, उसको कंट्रोल करने में मुआविन होता है और सेहत, दिल की सेहत की अगर बात की जाए तो उसको बेहतर बनाने में भी ये मुआविन साबित हो सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन जरिया है जो आपके बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और खास बात यह दोस्तों, कैंसर की रोकथाम में भी ये मददगार साबित हो सकता है। क्या क्या फायदे हैं थोड़ा सा इसके मुतालिक आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वाफिर मकदार में रहते हैं और सॉर्बिटोल होता है जो कब्ज से राहत दिलाने और पेट को साफ करने में मदद करता है। इस तरह से ये मुआविन है आपके निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखने के लिए। हड्डियों की बात करी जाए, इसमें मौजूद विटामिन के और दिगर अज्जा जो हैं वो हड्डियों को मजबूत करते हैं और जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस दरअसल हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने का खदशा हो जाता है कि कहीं थोड़ा सी आपको ज़र्ब लगी या आप गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें हड्डी के टूटने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस मुतालिक जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 100 ग्राम आलू बुखारे में महज 46 कैलोरीज होती हैं, जिससे ये वजन घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन नाश्ते का मुतबादिल है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि दिल की सेहत के लिए बहुत उम्दा है, वजह यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और पोटेशियम की वजह से ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में भी रखता है। चूंकि कोलेस्ट्रॉल अगर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल पे रहेगा। और आंखों और जल्द के लिए ये बहुत मुफीद है। विटामिन ए और सी की मौजूदगी की वजह से ये आंखों की बिनाई को बेहतर बनाने के लिए और आपके जल्द को चमकदार बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ब्लड शुगर में फायदा करता है और इसका अगर इस्तेमाल आप करते हैं जो अशखाश शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये मुफीद माना जाता है क्योंकि इसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। और एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन में कितने आलू बुखारे आपको खाने चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज्यादती हर चीज की बुरी होती है, वो चाहे कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना हो, तो मुतदिल मकदार में इसका इस्तेमाल करें। 3 से 5 आलू बुखारे काफी हैं और ये सेहत के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इसे सुबह खाली पेट या फिर स्नैक्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यूं तो किसी भी टाइम में इसको आमतौर पे लोग खा लेते हैं, लेकिन चूंकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर सुबह के टाइम खाली पेट इसे लिया जाए या नाश्ते के वक्त लिया जाए तो इससे बहुत फायदा होता है। और इसके अलावा आलू बुखारा तो देखिए सेहत के लिए फायदेमंद है ही, इसके तिब्बी फवायद है, लेकिन खास बात यह है कि इससे जो गोंद बनता है और इसकी जो छाल है, इसकी जो पत्तियां हैं, सब तिब्बी फवायद रखते हैं। जिन अफराद के बाल झड़ जाते हैं खास किसी एरिया से, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। खुजली के लिए और दांत खारिश या खुजली हो तो उससे निजात मिल सकती है आलू बुखारे के इस्तेमाल से, क्योंकि इसकी हर चीज में कुछ ना कुछ तिब्बी फवायद जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो जनाब, ये थी कुछ बातें आलू बुखारे के हवाले से जो बहुत सारे तिब्बी फवायद रखता है। एक फल तो है ही और जायकेदार फल है, खट्टा मीठा है, गर्मी के मौसम में तो बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि बाजारों में ये दस्तियाब रहता है और आजकल इसका मौसम भी है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और खास बात ये, अगर आपका पेट गड़बड़ है, कई बार दस्त या लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करता है आलू बुखारा। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी है। पेश खिदमत है प्रोग्राम हरफे सुखन।
2: सुखन के सामईन की खिदमत में तस्लीम व नियाज। दोस्तों, नगमों, मौसीकी और साजो आवाज के अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम में आप जिन शायरों के कलाम से लुत्फ अंदोज होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप उन शुरा के कलाम की खूबियों और उनकी शायराना कदर कीमत से भी रोशनास हो सकें। इस मुख्तसर से प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ दौर के अहम और नुमाइंदा शायर का कलाम पेश करके गजलिया शायरी के मुख्तलिफ मौजूआत, असालीब और लबो लहजे का एक मुख्तसर और वाज़ खाका आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि आप खुद हर दौर की गजलिया शायरी की तफहीम और तहसीन कर सकें। सामिन, यूं तो उर्दू शायरी का दामन कई अहम शेरी असनाफ की रंगारंगी से माला माल है, लेकिन इन असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा मकबूल और जिंदा व पाइंदा सिंफ गजल है। गजल एक अदबी सिंफ सुखन होने के साथ साथ तहजीबी और सकाफती एतबार से इस कसीर लसानी और तहजीबी मुल्क का एक निगार खाना भी है, इसीलिए गजल को उर्दू शायरी की आबरू भी कहा जाता है। यह एक जिंदा और पायदार सिंफ है जिसने हर जमाने, हर फर्द, हर समाज और हर किस्म के हालात का साथ दिया है, इसकी भरपूर तर्जमानी और नुमाइंदगी भी की है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से गजल अब उर्दू के अलावा दूसरी जबानों के अदबी और शेरी सरमाए में कदर व मंजिलत का इजाफा कर रही है। मौजूआत की वसत के एतबार से इश्क व आशिकी, गुल व बुलबुल, जुल्फ व रुखसार, तसव्वुफ, वेदांत, फलसफा, समाजी हालात और सियासी नशेब व फराग, गरज के जमाने और जिंदगी के हर पहलू और तमाम तस्वुरात की बरजस्ता तर्जुमानी की वजह से गजल एक अदबी सरमाए के साथ साथ तहजीबी विरसा भी है। सामीन, उर्दू गजल को इस मकाम और मर्तबे तक पहुंचाने में जिन शायरों ने बुनियादी और अहम रोल अदा किया है, उनमें मिर्जा असदुल्ला खां गालिब को अव्वलियत का दर्जा हासिल है। गालिब उर्दू का वो शायर है जिसने उर्दू गजल को मौजूआत और लबो लहजे हर एतबार से दुनिया की बड़ी और बुलंद शायरी के मेयार तक पहुंचाने का काम किया।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है फरमाइश फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिले इरशाद। आज का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज का आगाज एक कव्वाली के साथ।

भी साइड लाइन हो जाइए जो साहब इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सामने मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयाज अंसारी हैं। गंज टंडवारे से सुनने के मुंतजर अगले नगमे को अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशात अकरम और रुबीना वसीम हैं। नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है बाबा साहेब अडोदे आदिचार पे चंद्र प्रभा अडोदे का जरोड़ वरुड़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रेगनी छत्तीसगढ़ से और अभय नगमे की बारी।

और लीजिए आप सुनिए आशा भोसले और हमनवाओं की आवाजों में अब्दुल्ला फिल्म का नगमा, मौसीकी बुलुस ईरानी की और नगमा निगारे शेवन रिजवी। सुनने के मुंतजिर आप तमाम सामईन। महादेव पारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, कोटवा नारायणपुर, बापट्टी बलिया से सुनना चाहते हैं अगला नगमा। और अब तामिल इशाद प्रोग्राम में ईमेल के जरिए शामिल हो रहे हैं कंडला बंदरकश से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी, सिद्धार्थ गोंदा ने, अर्चना ताई गोंदा ने, प्रणय प्रसिद्धि हैं राहुल नगर अमरावती से, रुकनुद्दीन मंठार, शब्बीर बनट्टी, आसिफ इकबाल की फरमाइश है गुलबर्गा कर्नाटक से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग और साथ में हैं

सोनाली नारंग, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुणत की फरमाइश है बोरखेड़ा उज्जैन से। और अगला ईमेल मिला है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत का। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी की फरमाइश है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं हम मगर चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस। और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पिरखर की फरमाइश है। पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीष देवी और भुवनेश्वरी देवी हैं। लॉडड्डा जिला बागपत यूपी से अगला ईमेल मिला है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी और गीता का। और आप हैं कापासेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा और इकबाल मोगा। उत्तम को आप भगत, श्वेता भगत, किशुताशु की फरमाइश है पाकुड़ झारखंड से। और ये फरमाइश ईमेल मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सुनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा का। इसी नगमे को सुनने के मुंतजर है मीराज जहां, गुलाम साबिराही और ताज मोहम्मद अंसारी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक और बेबी गव्या मल्होत्रा।

और सामीन अब्दुल्ला फिल्म के इस नगमे को आप भी सुनना चाहते थे, सरलाई सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, धरेन्द्र शर्मा, साथ में राहुल कुमार शर्मा, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर थे देगांव तहसील पूर्णामा।

0: महाराष्ट्र से सदाशिव थोराट, कविता थोराट और साथ में श्रेया थोराट, और आप हैं खानजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद नजीब खान, साथ में उनके अशरफ खान, और इसी नगमे से महजूज हो रहे थे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर और विशाल नाहवकर। और अगला फरमाइशी मेल मौसूल हुआ कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, साथ में उनके अनिकेत दले। और गौरीनगर इंदौर से फरमाइश की थी आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले ने, इसी नकमे को सुनना चाहते थे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा और दिशानी। और अगला फरमाइशी मेल मौसूल है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग का। और आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, नागचून रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से। और तमिल शाद प्रोग्राम के इस नकमे को आपने भी पसंद फरमाया। आप हैं अश्वनी कुमार साहा, अमरदीप कुमार साहा और पशुपति साहा, जेपी लेन बिहार से आपके फरमाइश हमें मौसूल हुई। तमिल शाद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। दोस्तों ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं खबरें बर सगीर का उर्दू न्यूज बुलेटिन और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम का यानी तमिल इरशाद का।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है, बर सगीर की खबरों के साथ मैं फुरकान खान। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और अपनाए हुरमुज के रास्ते बिला रूकावट नकलो हमल की खातिर एक मुआहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, तिब्बी साजो सामान, पब्लिक सेक्टर ऑडिट, डिजिटल अदायगी निजाम और सकाफत और सियाहत के शोबों में मुख्तलिफ मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत के बाद इन मुआहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात के अलावा बाहमी ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तोलाम का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम की कदीमी चांपा तहजीब के माईसन और ना तो मंदिरों का अहिया कर रहा है। उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निपटने की खातिर भारतीय अवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तो लाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकतदारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नतीज को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफैन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरतहाल के इजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दोतरफा तजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहां जरई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तेफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफैन ने 2027 से वियतनाम की आवामी सेहत देखभाल की खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कानात से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाती राब्तों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात, तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी

रजामंदी जाहिर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा जनरल फान वैंग जियांग के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने देरेना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत सूरत हाल की अक्कासी होती है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वह दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के मुंतजर हैं। मगरबी बंगाल में बीजेपी की नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। बीजेपी के रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य ने नामा निगारों को बताया कि यह तकरीब सुबह 10 बजे शुरू होगी। पार्टी जराये के मुताबिक इसमें वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के मुख्तलिफ वज़राए आला की शिरकत का इम्कान है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मकाम का इंतखाब अलामती है क्योंकि यह जगह बंगाल में अहम सियासी रैलियों और बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा का गहवारा रही है। इस तकरीब में मुल्क के आला रहनुमाओं की मौजूदगी से यह जाहिर होता है कि बीजेपी इख्तदार की मुंतकली को इंतहाई अहमियत दे रही है। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार तश्कील करने का दावा पेश किया और रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर लेकर से मुलाकात की। टीवीके ने दीगर पार्टियों से भी राब्ता किया क्योंकि उन्हें रियासत में सरकार की तश्कील के लिए मजीद हिमायत की जरूरत है। कांग्रेस ने अपने 5 एमएलए होने के नाते टीवीके की हिमायत का फैसला किया है। उसने आज नामजद वजीर आला विजय से मुलाकात की और उन्हें अपनी हिमायत का मकतूब पेश किया। कांग्रेस ने अपनी दीरेना इत्तेहादी पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दिया है। आज रियासत में सियासी गहमागहमी का दिन था। मुख्तलिफ सियासी हलकों से तस्दीक और नई हुकूमत की तश्कील के तहत पहले कदम का इंतजार जारी था। हुकूमत ने मुत्तला किया है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की दस्तियाबी मामूल के मुताबिक है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर इसके खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मुत्तला किया कि मगरबी एशिया बहरान के दरमियान हुकूमत खाना पकाने के लिए एलपीजी के घरेलू सार्फिन को 100% और कमर्शियल सिलेंडर के सार्फिन को 70% तक फराहमी की खातिर सभी इकदाम कर रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 5 किलोग्राम के तकरीबन 1,20,000 एफटीएल सिलेंडर फरोख्त किए गए। उसने मजीद कहा है कि एलपीजी की जखीरा अंदोजी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कल इस सिलसिले में 2,100 से ज्यादा छापे मारे गए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि खित्ते में सभी भारतीय मल्ला खैर वाफियत से हैं और गुज़िश्ता 48 घंटे में किसी भारतीय परचमबरदार जहाज के सिलसिले में किसी वाकये की कोई खबर नहीं मिली है। जनाब शर्मा ने मुत्तला किया कि जहाजरानी के डायरेक्टोरेट में कायम करदा कंट्रोल सेंटर ने अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से ज्यादा ईमेल मौसूल की हैं। सालसियों के मुताबिक अमरीका और ईरान एक इब्तदाई माहदे के करीब हैं जो खलीज में जारी तनाजे के खात्मे का सबब बन सकता है। मुजाकरात से वाकिफ जराये के मुताबिक फरीकैन एक सफहे पर मुश्तमिल 14 नुकाती मफाहमतनामे पर काम कर रहे हैं। मुजवजा माहदे में ईरान की जानिब से न्यूक्लियर अफसूदगी को रोकने पर इतफाक करना शामिल है जबकि अमरीका को पाबंदियों में नरमी करनी होगी। मुजवजा माहदे में मुंजमिद ईरानी फंड्स में से अरबों डॉलर जारी करना शामिल है। तवक्को है कि दोनों आबनाए हुरमुस के जरिए नकलो हमल पर पाबंदियों में भी नरमी करेंगे। हुक्काम के मुताबिक इसके बाद वसी तर माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन पर मुश्तमिल मुजाकरात का एक दौर होगा जिसके दौरान बहरी पाबंदियों और इलाके में अमरीकी बहरी फौज की मौजूदगी को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रोजेक्ट फ्रीडम में तवक्कुफ किए जाने के ऐलान के बाद रवैये में यह तब्दीली रूनुमा हुई है। तेहरान इस वक्त अमरीका के 14 नुकाती तजवीज का जायजा ले रहा है जबकि अमरीका को तवक्को है कि अगले 48 घंटे में कई कलीदी नुकात पर ईरान की जानिब से जवाब मौसूल होगा। इस मुफाहमतनामे पर अमरीकी एलचियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और कई ईरानी हुक्काम के दरमियान सालिसों के जरिए बातचीत की जा रही है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब

0: इशारा दिया है कि खतरात कम होने के बाद आबनाए हुरमुज को महफूज आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोला जा सकता है। भारत के नौजवान मुक्केबाजों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 27 तमगे जीते हैं। आज अंडर 15 की लड़कियों की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 15 में से 14 तमगे हासिल किए, जबकि अंडर 15 लड़कियों की टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और 15 में से 13 तमगे जीते। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुज के रास्ते बिला रूकावट नकल व हमल की खातिर एक मुआहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 37 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। प्रोग्राम जारी है तामीर इरशाद। एक बार फिर आप तमाम सामीन का खैर मकदम। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन की समातों की नजर। एक हकीकत सही फिरदौस पे हूरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं।

और अब फरमाइशें शामिल करते हैं अगले नगमे के लिए। अगला नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और रवि की है मौसीकी। फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के। तो इसी प्यार के रास्तों पर चलते हुए कुछ नाम भी शामिल कर लिए जाएं, और वरना तो फिर ये मोहब्बतें कहीं नाराजगी में शामिल तब्दील ना हो जाए। नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीदेव गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी और विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू हैं रामगंज खंडवा से। और ये फरमाइश आई है बांदा यूपी से फहीम मंसूरी अदी फातिमा मंसूरी की जानिब से। अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, दूलापुर मुरादाबाद से और छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और पंजू सराय संभल से हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबात हुजरे की फरमाइश है सांगली जत शहर से। यवतमाल से अनिल, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयूब खत्री छिपा कॉलोनी खंडवा से हैं। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक कासगंज यूपी से। और अगला ईमेल हो गया रिपीट, इसको भी हमने साइडलाइन कर दिया। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता और कर्ण की फरमाइश है अगले नगमे के लिए। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर, धनंजय कटंकर, गांधी बाग अकोला से और चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव सागर एमपी से हैं। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से और प्रकाश भारती, प्रकाश अम्बाड़े, वैष्णवी हर्षल अम्बाड़े, जानवीर अम्बाड़े, पंगाली पंजा नागपुर से।

और आप नगमा भी सुनते रहिए, कुछ नाम शामिल कर लेते हैं। पुरानी भिलाई 3/4 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, साथ में जीशान अहमद सिद्दीकी। नई बस्ती गंज टंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी और साथ में तौसीफ हाशमी। जिला हलनी नांदेड़ से हैं मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी पाटिल, प्रियंका जय पाटिल, गोपाल मोदी, रमेश मोदी, सक्षम मोदी, पिपलिया मंडी मंदसौर से, शंभुदयाल खटक, साथ में विमला देवी और दीपक गांव जाखोद से, विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर की फरमाइश मिली रायपुर छत्तीसगढ़ से, सोमदत्त कैरव और गुरमंत कौर मनु हैं जिला पटियाला पंजाब के नाभा से, और ये फरमाइश मौसूल हुई रेलवे रोड गंज टंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया, और ये फरमाइश आई शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान के मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से। और अब आपकी नजर करते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा, राखी फिल्म से है, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, रवि की है मौसीकी और राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं जिसको सुनना चाहते हैं सुब्रत चौधरी कोलकाता से, और ये फरमाइश आई है नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह और जिला बेगूसराय से, आपने फरमाइश मेरे साल की है। और हरमिंदर चावला, सोन जोशी, शिव कुमार शर्मा हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से, सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, कृष्णा पाक दिल्ली से सुनना चाहते इस नगमे को, संजय ढींगे नमन ढींगे अपार हैं बागपत यूपी से, और ये फरमाइश मिली है गंज टंडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन अलकमर जहां और शिफा सिमरन की। पंकज, अच्छा पंकज तो यहां दूर दूर तक नहीं है लेकिन हाँ मॉडल

हम करनाल से हैं सुधीर नूतन, माया कुमार और हरिपाल कौर, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, कस्बा बराड़ा, अम्बाला हरियाणा से, सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और साथ में कल्पित चौहान सुनने के मुंतजर अगले नगमे को। और ये फरमाइश आई है समर्थ दादा देठे पाटिल, भगवत देठे पाटिल और लक्ष्मी के, धामणगांव महाराष्ट्र से, और भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु हैं, फाजिल का पंजाब से। तो आइए नगमा सुनते हैं और जब वक्त रहेगा तो कुछ नाम शामिल किए जाएंगे।

रघुवीर नगर से दिलावर खान सिनेमानो और लड्डू जो इस नगमे को सुन रहे हैं, और अजमेर शरीफ राजस्थान से गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी साथ में हैं, सैयद कुछ और साथी, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, और साथ में है वंश कनेरा मोहल्ला पटियाला से। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी के फुलाओं, निजामाबाद तेलंगाना से। और आप हैं शाहिद अली, इफ़त फारूकी और हिफ्जा अली, तम्बरम एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई से। और इसी नगमे को सुन रहे हैं राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, मास्टर रुद्र गुप्ता, पोषण वंशोर, चंद किरण और छाया हैं पहारा दुग से। मदरसा गेट भापुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद और हजरत तबस्सुम भी शामिल हो गए हैं जनाब। और एक ईमेल ऐसा है जिसमें सिर्फ ईमेल आईडी है, नाम शामिल नहीं हुए हैं। जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जैस्मीन भट्ट की फरमाइश भी हो गई है मुकम्मल। और आप हैं मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, शेख मोहम्मद अजीम और कामरान खान, लक्ष्मण झिंझुर के, रोहिणी झिंझुर के और अभिजीत हैं नवरंग मार्केट शेगांव महाराष्ट्र से। अनिल जैन, संयम जैन, जीवम जैन की फरमाइश मलियान सरधना मेरठ से मौसूल हुई है। और भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद और साथ में है राहत अली, उस्मान शेख फौजी, सायर अमानो, करिश्मा शेख लातूर परसोगा से। सिंधरौली बरेली से हैं, सिंधौली माफ कीजिएगा, जीशान वारसी, इमरान शेख और साथ में अय्यूब खान।

0: और इसी नगमे को सुनना चाहते थे आनंद राज सागर, तरुलता सागर, चांदखेड़ा अहमदाबाद से। और अगला ईमेल रिपीट है तो इसको यहीं ड्रॉप करते हैं, और वैसे भी वक्त की जहां तक बात है तो भी खत्म हो रहा है। कोला महाराष्ट्र से ये आखिरी ईमेल है रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले का, और ये थी तमिल शत्रुघ्न की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेमीकॉन एक्सपर्ट अशोक चांडक, आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष

0: कुमार पांडे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जानकारी साझा की है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया, माइक्रो एलईडी के लिए बहुत प्रयास करके साउथ कोरिया का कोलैबोरेशन करके ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए, जिसमें कि पहली माइक्रो एलईडी का फैब इंडिया में लगेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा।
0: अशोक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये जो फैसला है, इस फैसले को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: एज इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन एंड सेमी, हम इन 2 परियोजनाओं को अप्रूवल को भारत के सेमीकंडक्टर यात्रा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जिससे तेजी से विकसित हो रहा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा और देश के वैश्विक टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लक्ष्य में नई गति मिलेगी। ये जो 2 प्रोजेक्ट कल अप्रूव किए, एक असेंबली यानी टेस्ट ऑफ चिप्स का है और दूसरा डिस्प्ले रिलेटेड है। और सेमीकंडक्टर तो आज डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में उसका उपयोग होता है। इसके तहत ये बड़ी आधुनिक तकनीक है और इस मंजूरियों के साथ में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी 12 परियोजनाओं को और प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है और यह दर्शाता है कि भारत एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: अशोक जी, अब तक जो हमारी देश की उन्नति अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम देखें, बहुत अधिक समय नहीं हुआ हमें इस शुरुआत को किए हुए, लेकिन कम समय में ही काफी उन्नति की, आपके नजरिए से अब तक की इस प्रगति को किस रूप से आप देखते हैं?
2: मैं कहूंगा कि सेमीकंडक्टर की प्रगति हमारी बड़ी उल्लेखनीय है, जो कि बाकी कई देशों में इस स्पीड में काम नहीं हुआ। हमारे भी कुछ साल के कार्यकाल में ही 12 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए, उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन सेटअप चालू हो गया, 2 प्रोजेक्ट अभी मास प्रोडक्शन या कमर्शियल प्रोडक्शन में हो गए, 2 और प्रोजेक्ट इस साल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, बल्कि क्लियर एग्जीक्यूशन और आउटकम है। तो जो ISM हम बोलते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये सारे जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, इसको काफी सहायता मिल रही है गवर्नमेंट से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये कंपनियां भी काफी उत्सुक है जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा करें और इसके जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाएगा और वैल्यू एडिशन बढ़ेगा।
0: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे ECLGS भी कह रहे हैं, जो MSME सेक्टर को बिना अतिरिक्त कोलेट्रल के ऋण देने के लिए शुरू की गई, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा है।
1: इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमारे जो MSMEs और एविएशन सेक्टर को जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम प्रूव हुई है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। बेसिकली ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक तरीके से, और ये मॉडल अगर आप देखें तो कोविड के समय से ये मॉडल स्थापित हुआ है। और इस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉरल हैजार्ड नहीं रहता। जो ECLGS 5 लाया गया है, ये इन सबसे बड़ा स्कीम है, क्योंकि यही टाइम है जब लोग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। टोटल सपोर्ट इसमें 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा।
0: शिशिर जी, इस तरह का जो कदम है, ये हमारे MSME, GDP और रोजगार में किस तरह से प्रभावी होगा, किस तरह से लाभ पहुंचाएगा?
3: देखिए, ये जो ECLGS है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके पहले संस्करण की बात अगर हम करें, जो कि कोविड के समय में हुआ था, और उस समय इसका मकसद ये था कि जो हमारे MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो GDP की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, उनके लिए जो पूंजी की जरूरतें हैं उसको हम कैसे फौरी तौर पर पूरी कर सके, और वो भी आसान शर्तों पर। तो इसके 4 संस्करण आए 2020 से लेकर के अब तक। अब जब पश्चिम एशिया का जो संकट आया, इसके बाद हमारे उद्योग जगत को काफी परेशानी हुई, खासतौर पे जो कार्यशील पूंजी, हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2,55,000 करोड़ रुपए की जो ऋण सुविधा है, उसकी गारंटी देने के लिए ये योजना लाई गई है। अब इस योजना में 5,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है केवल और केवल एयरलाइन सेक्टर के लिए। और उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि चूंकि एयरलाइंस कंपनियां जो है वो ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि उनके लिए तेल जो है जो कि उनके परिचालन का लगभग 40 से 45% योगदान कर

0: सकता है, उसकी लागत काफी बढ़ी है। तो अब ये जो 2,55,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है, ये 8 या 9 मई जिस दिन से नोटिफिकेशन इश्यू होगा उसके बाद से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जितने भी कर्ज सैंक्शन होंगे यानी कि मंजूर होंगे वो इस योजना में शामिल होंगे। याद रखिए कि ये वन टाइम स्कीम है, यानी कि एक बार ही आप इसमें फायदा ले सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे एमएसएमई, नॉन एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर के लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए ब्याज की दर क्या होगी। तो जो एमएसएमई और नॉन एमएसएमई है उनके लिए बैंकों की ओर से मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दर 9% की अधिकतम सीमा तय की गई है। एनबीएफसी से यदि वो कर्ज लेते हैं तो उनके लिए अधिकतम सीमा 13% की है। और मान लीजिए कुछ जो उद्योग हैं जिसके लिए ब्याज दर की एक व्यवस्था लागू की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ईबीबीएलआर। हमारे श्रोताओं के लिए ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ आज के दिन में आप और हम जैसे एक व्यक्तिगत तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो हमें रेपो रेट आधारित ब्याज दर पे मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये एमएसएमई के लिए अनिवार्य है, नॉन एमएसएमई के लिए अनिवार्य नहीं है। तो उनके लिए भी ब्याज की दर की अलग सीमा तय की गई है जो कि आपके एमसीएलआर से 0.75% तक हो सकता है। तो ये ब्याज दर की बात है,
1: कम या हो सकता है या ज्यादा हो सकता है?
0: देखिए 9% अगर है तो वो काफी बेहतर स्थिति है अगर आप एमएसएमई की बात करिएगा, क्योंकि कई जगहों पर जो ब्याज की दर है खासतौर पर वर्किंग कैपिटल में जो उससे ज्यादा भी हो जाता है। तो ये एक संतुलित है और इससे एक फायदा ये होगा कि आपके लिए कर्ज जो चुकाने की परेशानी जो है वो होगी नहीं। और ऐसे भी पहले चार जो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के देखे उसमें एनपीए बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट
1: जी।
0: तो ये इस स्कीम की रूपरेखा है। तो एक पहला ये कि ब्याज की दर 9%, 13%, दूसरा ये कि 31 मार्च 2027 तक जो कर्ज मंजूर किए जाएंगे, और तीसरा ये कि एमएसएमई और नॉन एमएसएमई के लिए कर्ज चुकाने के लिए 5 साल का समय होगा, एयरलाइंस को 7 साल का समय।
1: इसमें ये भी देखा जा सकता है कि जैसे सरकार तो नजर रखती है हर एक चीज पर, तो सरकार ने ये भी देखा कि जब हमें एनपीए जैसा आपने बताया कि कम होने की बात जहां पर की जा रही है, तो छोटे व्यवसायियों को अधिक आकर्षित करने के लिए एमएसएमई से जोड़ने के लिए कदम उठाया गया।
0: ये जो छोटे व्यापारी हैं इनके लिए दोहरी मार है। पहली तरफ तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या कि जो बड़े उद्योग को ये माल देते हैं वहां से इनको पैसा पाने में समय लगता है, और अभी के समय में जब बड़े उद्योग भी परेशानी में है तो उनके लिए और दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का काम चलता रहे, उनके लिए कार्यशील पूंजी जुटाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए यह कदम उठाया गया। लेकिन बड़े उद्योगों की भी जो है वो सुध ली गई है, क्योंकि जो नॉन एमएसएमई की हमने बात की वो बनाने का जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर रहा है, मतलब क्लीन स्लेट कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज की सीमा जो है वो 100 करोड़ रूपए एमएसएमई के लिए और एयरलाइन सेक्टर के लिए 1500 करोड़ रूपए की है।
1: और आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गन्ने के बारे में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है इसके बारे में क्या जानकारी दी है।
2: 2012-13 में अगर हम देखें तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है कैबिनेट ने, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। करीब करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% अधिक देने का जो मिशन रहता है उसके कंपैरिजन में ये करीब 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल इंडिया वेटेड कॉस्ट, करीब 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों को इस पूरे प्रोग्राम में मिलेगा।
1: शिशिर जी, कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 में चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करते हुए इसे 365 रुपए प्रति क्विंटल किया है, तो ये लगभग 10.25% की मूल वसूली दर पर आधारित भी है। और वैष्णव जी ने यह भी कहा कि इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। सभी के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं इस फैसले को?
0: देखिए, गन्ना इकलौता कृषि उत्पाद है जिसके लिए एक अलग व्यवस्था अपनाई गई है। बाकी के लिए आपको पता है 21-22 जो हमारी फसलें हैं उनके लिए हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात करते हैं, जबकि यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का है। और इसमें एक और सुविधा ये दी जाती है कि इसके ऊपर अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो बोनस का ऐलान कर सकती हैं, जो कि चीनी मिलें जो होती हैं उनको देना होता है। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, चीनी मिल को इसका भुगतान करना है। और और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी के समय में जब चीनी का उत्पादन ठीक ठाक चल रहा है वहां पर और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 365 रुपए का किया गया है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो 2014 में 220 रुपए प्रति क्विंटल का FRP था जो कि अब 365 हो गया और पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो 355 रुपए

0: रुपए का जो शुगर सीजन होता है उसमें रखा गया था। इसमें आप समझिए कि किसानों को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बेहतरी की बात होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। और जब हमारे देश में 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, उनके हाथ में अगर अतिरिक्त पैसे आते हैं, संसाधन आते हैं, तो इससे मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो आप अगर शुरुआत करेंगे, कहेंगे कि गन्ने का FRP बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर इसका अंत देखेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसका किस तरीके से फायदा।
1: शिशिर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो कपास का जो क्षेत्र है उस पे भी लगातार सरकार का मतलब एक रुझान रहता है कि उसको भी हम लगातार देखते रहें, बाधाओं को दूर करना, घटती वृद्धि, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर किया जाए। तो इसीलिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के आप क्या दूरगामी लक्ष्य देखते हैं और इसका क्या परिणाम होगा?
0: देखिए, हमारे देश में इस समय लगभग 32 लाख कपास के पैदा करने वाले हमारे किसान हैं, और इनके लिए कई तरह की जो वैल्यू एडेड या कई तरह के जिसको कहते हैं ना यूनिक जो कपास होते हैं, अपने आप में विशिष्टता वाले कपास होते हैं, उनके पैदावार को कैसे बढ़ावा देना। तो ये जो कपास क्रांति की जो बात की जा रही है, ये केवल और केवल पैदावार बढ़ाने की बात है, इसमें शोध को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है, इसमें बाजार को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। तो इसमें यह है कि अगर आप देखेंगे तो 5F जो सरकार ने जो बात कही है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, यानी कि आप खेत से विदेश, यानी कि आप किस तरीके से दुनिया के बाजार में आप और मजबूती से आ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक पारंपरिक तौर पर कपास का एक जो सिले सिलाए कपड़े हैं उनका एक निर्यातक देश रहा है। अब वो निर्यात में और मूल्यवर्धन हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, जहां पर आपको कई देशों से अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, चाहे आप वियतनाम की बात करें, चाहे आप अपने पड़ोस में बांग्लादेश की बात करें, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इस कपास क्रांति का जो है वो महत्व है।
1: तो शिशिर जी, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, जिस तरह से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा, और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वर्तमान में 33, इसे बढ़ा करके 37 करना इसका मुख्य निर्णय है। तो ये जो फैसला लिया जा रहा है, संख्या में वृद्धि की जा रही है न्यायाधीशों की, तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकुशलता को और अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए इस तरह के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं?
2: जो आज प्रेजेंट डेट पर सेंशन डिस्टेंस है वो है 34 की, जिसको बढ़ाकर 38 करने की बात कही जा रही है। 37 जजेस प्लस एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब आपको समस्या की गंभीरता जो हमारी जुडिशरी आज फेस कर रही है वो ये है कि पूरे देश में अगर आप देखें, करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं, और नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे देश में आज भी केवल 22 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि हम पाते हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर ये 150 से 200 तक ये संख्या है पर मिलियन पॉपुलेशन। अप्रोक्सीमेटली करीब 92,000 केसेज एज ऑन टूडे सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। आज की डेट में जो अवेलेबल जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, ऑल्दो सेशन स्ट्रेंथ आपकी 34 है, लेकिन 32 जजेस आज की डेट में काम कर रहे हैं, और 32 जजेस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हर बेंच में 2 जज होते हैं, तो इफेक्टिवली आपकी 16th, और अगर हम 34 माने तो 17 बेंचेस काम कर रही हैं, और 17 बेंचेस के सामने अगर आज 2,500 केसेस लगे हैं, डेटा ही आपको ये बताने में सक्षम है कि हमारे जजेस ओवरबर्डन हैं। और इस चीज को देखते हुए अगर 4 की संख्या बढ़ाई जा रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है।
1: आशीष जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1,71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारे नशियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है चंद कवालियां फनकारें सरफराज साबरी कवाल और हमनवा।

0: यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाली रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक के एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशात जारी हैं। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए अब सुनिए पंडित प्रकाश वाडेरा का फ्लूट पर बजाया राग जो कौंस।

दुश्वार हयात की राहों से गुजरे हैं बहुत इंसान, लेकिन मोमिन है वही जो मंजिल तक, मोमिन है वही जो

0: तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय यह सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सुरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा।

0: 33 runs at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRI न्यूज 24x7 चैनल है. साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 1:10 और 10 सेकंड. साथियों, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का समय होता है. जी हां, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा. साथियों, ये गीत ऐसे होते हैं जो आज तक सुने जाने वाले गीत हैं. एक से एक बेहतरीन, लाजवाब, जस्ट लाइक सोना, एकदम खरा सोना जैसा खूबसूरत संगीत, खूबसूरत गीत, खूबसूरत गायक, खूबसूरत संगीतकार, खूबसूरत गीतकार, सभी अनमोल एक ही जगह इकट्ठे होकर, यूं कहिए कि एक से एक सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत रचनाओं का कार्यक्रम होने वाला है. गीत सुनहरे, तभी तो कहा जाता है गीत सुनहरे. बिल्कुल गोल्डन एरा फिल्म, म्यूजिक ऑफ गोल्डन एरा. जी हां दोस्तों, तो आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और मेरे साथ हैं,
2: मैं हूं मनोज कुमार.
1: तो आइए आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गीत के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं. तो हो जाइए तैयार, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत फिल्म भक्त सूरदास से, ये शानदार, माफ कीजिएगा, भक्त सूरदास एक फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, और खुर्शीद की आवाज में शानदार रचना है. भक्त सूरदास 1942 प्रदर्शित फिल्म रही है, और इस गीत को संगीत से सजाया है ज्ञान दत्त ने. तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और खूबसूरत रचना.

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रतन से जोहरा अंबाला और साथियों की मधुर आवाज में। संगीतकार हैं नौशाद साहब।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आइए अगला गीत सुनते हैं सुरैया की मधुर आवाज में, फिल्म अनमोल घड़ी से। संगीतकार हैं नौशाद साहब।

श्रोताओं, गायिका सुरैया की आवाज में ये मधुर गीत अभी आपने सुना। अगला गीत भी सुरैया की ही आवाज में हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म दर्द से। गीत ये बोल हैं, चले दिल की दुनिया। संगीत दिया है नौशाद साहब ने।

जी हाँ, श्रोता वाकई बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे, लाजवाब बेहतरीन ला खूबसूरत रचना। साथ ही एक गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा गीत है और ये गीत वाकई अपने आप में बहुत ही अनमोल है। और जैसे कि हमारे साथी ने बताया था कि हाँ ये गीत वाकई बहुत ही शानदार, क्या कहते हैं आप? तो वाकई हम कहाँ और तुम वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत है और फिल्म शहीद से 1948

प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत गाया है यानी कि गायक है सुरेंद्र जी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को गुलाम हैदर ने। तो आइए सुनते हैं शानदार बेहतरीन रचना।

जी हाँ जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा है कि सारी रात प्रोग्राम सुनते रहे हैं। वाकई गीत संगीत का वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल गीत अभी आप सुन रहे हैं, और इसी कड़ी में एक और गीत आ रहा है आपके पास, और ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो ये गीत सच में जब आप सुनेंगे, ऐसे तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो श्रोता साथी होते हैं, रात को जिनको नींद नहीं आती है तो वाकई करवटे बदलते रहते हैं, और ऐसे में उनका एक सहारा बनता है गीत संगीत, है ना। दिल हमसे वो ले गए, जी हां दिल हमसे वो ले गए, फिल्म बारादरी से शानदार खूबसूरत गीत है और आवाज से सजाया है मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों ने। ये फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, और कैटेगरी की हम बात करें तो ये कव्वाली नुमा एक खूबसूरत रचना है, और इसे गीतकार हैं इसके खुमार बाराबंकी भी और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन अनमोल रचना।

सुंदर अनमोल बेहद खूबसूरत रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, और ये गीत नैन खोए खोए। जी हाँ, ये गीत के बोल हैं और मुनीम जी फिल्म, जी हाँ मुनीम जी फिल्म से, जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में शानदार बेहतरीन रचना। संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब। मन नहीं कर रहा है, प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है, तो मन नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को हम समापन की ओर लेके चले। लेकिन हाँ, फिलहाल एक और गीत सुनवाना चाह रहे हैं आपको, और ये है चैन मेरा लूटा। ये टाइटल है यानी कि गीत के बोल हैं, चैन मेरा लूटा। एक फिल्म है दुर्गा माता। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माता फिल्म से एक शानदार बेहतरीन रचना आ रही है, जो 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है और एस जानकी की आवाज में सुंदर रचना है, और गीत विक्रम प्रोडक्शन द्वारा है और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को जी के वेंकटेश ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। सुनो जी क्या अदायगी थी, क्या वेरिएशन थी, वाकई लाजवाब अनमोल। साथियों, आज के कार्यक्रम की यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी, सुंदर, खूबसूरत और बेहद अनमोल खूबसूरत रचना। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बता देते हैं, ये फिल्म है दुल्हन है। जी हाँ, दुल्हन है, हाँ माफ कीजिएगा, ये फिल्म है अनपढ़, जो 1962 प्रदर्शित फिल्म रही, फिल्म अनपढ़। और एक टाइटल गीत है दुल्हन है। जी हाँ, दुल्हन है, और मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में शानदार बेहतरीन रचना है। अनपढ़ फिल्म 1962 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया इस शानदार गीत को मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना, आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहद खूबसूरत रचना।

0: नल्ला सुभान नल्ला, एक बात पूछूं
1: कहीं
0: मैं कैसे क्या लाई है
1: नखरों रो संदूक
0: और क्या

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनपढ़ से। घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, क्योंकि थोड़ी देर में 2 बजने वाले हैं और 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तो इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी समाचार और उसके बाद 2:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ

0: मृदा तत्व चिकित्सा उत्पादन विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार निवेश रक्षा और ऊर्जा विकास सहायता और क्षमता निर्माण स्वास्थ्य और आवाजाही संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमरीका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, 3 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर ज्वाइंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bowa in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defense and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In West Bengal, in a shocking incident, Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Suvendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram. According to reports, bike-borne attackers opened indiscriminate fire at his car in the Dhoria area. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. According to sources, 8 attackers on 4 motorcycles followed the car and ambushed it. Soon after the incident, several BJP leaders visited the hospital. Meanwhile, BJP leaders have blamed the Trinamool Congress and accused Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee of involvement. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. Meanwhile, Congress, having 5 MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support. In Keralam, discussions to form government is progressing at Thiruvananthapuram. Congress Legislature Party is set to meet this morning, according to KPCC President Sunny Joseph. Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh has said that India stands at a critical juncture with its scientific ecosystem, making global contributions in areas ranging from space exploration and vaccine development to quantum technologies and deep sea missions. He made these remarks while addressing the valedictory session of the first Indian National Science Academy and the Capacity Building Commission Administrative Training Program in New Delhi yesterday. The government has debunked an image circulating on social media claiming that Union Home Minister Amit Shah has said that West Bengal will become a dry state from 30th September. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, informed that the image is fake and digitally edited. PIB has further stated that no such announcement or statement has been made by the Home Minister. United States and Iran are edging closer to a preliminary understanding to ease the conflict in West Asia, with regional sources saying a draft memorandum is under active discussion. The reported one-page 14-point framework would open a 30-day window for negotiations toward a wider agreement. And that is the end of this news bulletin.
0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सबसे पहले ये गजल पंकज उधास साहब की आवाज में।

श्रोताओं, अभी ये गजल आपने सुनी पंकज उधास साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल पंकज उधास साहब की ही आवाज में।

श्रोताओं, पंकज उदास साहब की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

0: जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, वाकई बहुत ही शानदार। मजबूरी भी ना जाने क्या क्या कर जाती है इंसान के जीवन में, है ना। तो वाकई बहुत ही दर्द भरी, लाजवाब, खूबसूरत गीत गजल थी, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। इमोशंस जो थे तो बाकी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे, और मेन जो आर्टिस्ट रही वो थी चित्रा सिंह। वाकई बहुत ही लाजवाब गीत और गजल। आइए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल आज के कार्यक्रम गीत गजल कार्यक्रम के अंतर्गत, आज की आखिरी सुंदर और बेहतरीन गजल।
1: गजल गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं, 4:54 और 5 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। ठीक छह बजे यानी प्रातःकाल के समय आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार और 6:10 पर समय होगा कार्यक्रम वंदना का, जिसमें आप सुन सकेंगे भजन। और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

6:45 पर समय होगा रामचरित मानस का, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 48। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी का आनंद उठाएंगे। 8 बजे आप समाचार प्रभात सुनेंगे और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का और 8:45 पर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुन सकेंगे। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे समाचार।